0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम।
1: बिंदास। चांदनी रातें
0: अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।
2: जबरदस्त

0: listening to Radio Olive 106.3 FM. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।
1: अभी बजाएगा ना भिड़ो।
2: सड़कों से सीखा लेकिन बातें ऐसे जैसे गारा में कवाली। फटेगा आड़ा तो नीचे गड़ेगा मेरे जैसा है कोई नहीं मोवाली। देंगे ये सलामी चलने को जगह

एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM। जियो बिंदास।

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

0: दस मॉर्निंग हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: रोमी और अनुराग सैकिया की आवाज में मिस मैट सीजन 2 से इश्क है ये ब्यूटीफुल गाना और नया सीजन भी आने वाला है. You're listening to Radio 106.3 FM. तनीषा आगे जी आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स लेकर संडे का दिन अगस्त 9th. गुड मॉर्निंग है जी.
1: गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल.
0: हाय हाय.
1: लुकिंग वेरी गुड वेरी नाइस. गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल. लुकिंग वेरी गुड वेरी नाइस.
0: एंड जी इसी पॉजिटिविटी एनर्जी और एंथुसियाज्म के साथ हमने अपना नया हफ्ता शुरू करना है, आज का दिन शुरू करना है. ठीक है, सब बढ़िया होगा इंशाल्लाह, यही सोच के चलना है. बाकी बढ़िया बढ़िया गाने देखो क्या लाइन है आपके लिए यार.

0: एब्सोल्युटली क्रेजी भाई, जब ये गाना स्पाइडरमैन के टीजर ट्रेलर में देखा गया, क्रेजी हो गया था. एवरीबडी वेंट लाइक यू नो क्रेजी की एक छोटा सा बैंड जिनका एक दो गाने ही बहुत ज्यादा फेमस हुए हैं, एंड देन सडनली द सेकंड थर्ड सॉन्ग व्हिच इज कमिंग इज इन स्पाइडरमैन. अलग लेवल पे खेल चल रहा है यार.
1: चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए.
0: थोड़ी नॉस्टैल्जिक फील्स भी, और साथ में अमरिंदर गिल साहब भी वेट कर रहे हैं.
1: बड़ा समझ आया तेनू, समझ न आया का तू कर दाए दिलदारियां.
0: बड़ा ही प्यारा गाना है यार, और दिल का कुछ नहीं कर सकते आप. वो कभी नहीं सुनने वाला आपकी, वो अपने मन की ही करता है. हाँ जी, और साथ में ये भी है.

पता करेंगे ये भी क्या है। फिलहाल जानना चाहूंगी आपके हालचाल, कि आपका वीकेंड कैसा रहा। मुझे बहुत ज्यादा मिस तो नहीं किया ना वीकेंड पे, तो आ जाओ मैसेज कर दो 3311063 पर, अपने हालचाल बताओ, अपना वीकेंड कैसा गया इसके बारे में बताओ, और एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग भेजो, मेरा दिन तो वहीं बन जाता है। ऑल्सो द पीपल हु आर यू नो ऑन देयर वे टू वर्क, या फिर जो अभी तैयारी कर रहे हैं गेटिंग रेडी फॉर वर्क, सबके लिए गुड मॉर्निंग। बहुत कमाल दिन जाने वाला है आज, ठीक है। Stay tuned to Radio Olive. See you in this.

0: are listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: यार मुझे 10 GB फ्री मिला मेरे हाला रिचार्ज के साथ।
2: क्या कैसे?
1: बस रिचार्ज करो और तुम्हें फ्री डेटा या मिनट्स मिलते हैं। कल मुझे 50 फ्री मिनट्स मिले।
2: रोज मिलता है क्या?
1: हाँ रोज मिलता है।
2: मैं भी अपना हाला नंबर रिचार्ज कर रहा हूँ।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
3: हेलो नमस्कार, मम्मा मिया, मैं हूँ चंकी पांडे और आप सुन रहे हो मुझे रेडियो ओलिव

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: Danisha.
1: Danisha. Kavita Seth and Amita Bhattacharya ke awaaz mein ek tara from the movie Wake Up Sid. Beautiful gana, khoobsurat lyrics. You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Danisha aapke saath Bindaas morning chal rahe hain yahan par aur messages par liye jaye thode se. Nazni ji ka message aaya hai. Good morning, just wanted to let you know I'm thinking of you and hoping you have a wonderful day. So sweet, wishing you the same, Nazni ji. And Abrar ji ne bhi good morning bheja hai ek chai ke cup ke sath. Main chai hi imagine karu, it's just a cup. Ab usme kya hai ye mujhe nahi pata. To mujhe chai pasand hai, to chai hi hai, theek hai. Sandhu ji ka bhi message aaya, good morning ji, have a wonderful day, start your day with a smile and share with the joy. Harpal Sandhu Dukhan Zikre, thank you so much. Shashikant Patil ji ka message aaya hai, good morning. Life is full of surprises, indeed. When your day is wonderful, cherish it. When it becomes difficult, stay strong. Be grateful every day. Being grateful every day is the key, you know. Matlab, jitna zyada aap grateful rahenge for all the things we have in our life right now, utna zyada you will attract, you know, positivity, abundance. It goes hand in hand. Jitna hume ye lagega na ki yaar enough hi nahi hai, content hi nahi mehsoos kar pa rahe hai, उतना ज्यादा हमारी जो ग्रोथ है उसको हम हैम्पर करेंगे, हम खुद उसमें रुकावट बनेंगे. सो बी ग्रेटफुल मेरी जान. एंड अतुल जी का भी गुड मॉर्निंग आया है, कह रहे व्हाट अ लवली डे विद दिस अमेजिंग सॉन्ग, द सॉन्ग आई प्लेड बरसात, उसके लिए उन्होंने मैसेज किया था. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी एंड दोस हु आर यू नो ड्राइविंग राइट नाउ. Be very careful, आप बहुत important है, phone वोन use नहीं कर रहे हैं, मुझे सुनते रहिए. When you reach to your destination, आप मुझे message कर सकते हैं, मैं इंतज़ार कर लेती हूँ यार. और बाकी जो इस वक्त बस में है, you know, going to work, और ready हो रहे हैं, और you know, whatever you're doing, just let me know, अगर आपके पास वक्त है, और आप अपना फ़ोन use कर सकते हैं इस वक्त, तो take it out. 3311-1063 is the number. मैसेज कीजिए, गुड मॉर्निंग भेज दीजिए अपने नाम के साथ, बस और क्या चाहिए यार. सेंडिंग अमरिंदर गिल की आवाज में दिलदारियां, कूल सॉन्ग ऑफ द आवर, स्टे ट्यून्ड ऑन रेडियो बिंदास. ओसम रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है. ओसम

सुनीति चौहान की आवाज में धूम मचा ले फ्रॉम द मूवी धूम, और यही एकदम यही एनर्जी रखनी है आज पूरे दिन में, ठीक है? ये आपके लिए भी टास्क है और मेरे लिए भी। यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम तनिषा के साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर, एंड मुझे पाली जी का गुड मॉर्निंग आया, गुड मॉर्निंग जी क्या हाल चाल है, और केसर जी का मैसेज आया, गुड मॉर्निंग स्टार्ट योर डे विद अ हैप्पी हार्ट एंड अ बिग स्माइल, सो स्वीट विशिंग द सेम फॉर यू। एंड इमरान जी का भी मैसेज आया, गुड मॉर्निंग तनिषा, रेडियो इज द थिएटर ऑफ द माइंड, एवरी मॉर्निंग योर वॉइस पेंट्स द सनराइज फॉर 1,000 अनसीन फ्रेंड्स। इंडीड इट डज, दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट रेडियो, यू नो। मैं आपको नहीं जानती, आप मुझे नहीं जानते, बट जो हमारे इमोशंस, दिस ब्यूटिफुल म्यूजिक, इसकी वजह से जो हमारा क्रेजी कनेक्शन बना है ना, अमेजिंग है। और आई डोंट नो, इससे सुंदर रिश्ता कोई हो सकता है क्या? आई डोंट थिंक सो यार। बाकी एक बड़ी सुंदर सी बात मैंने आपसे करनी थी, सुनिएगा गौर से, ठीक है? जिंदगी की थाली में 15 तरह के व्यंजन हैं, जिंदगी की थाली में 15 टाइप्स के डिशेज हैं, लेकिन अगर रायते में नमक ज़्यादा हो गया है तो बाकी की जो 14 डिशेज हैं उन्हें इन्जॉय करो ना, पूरी थाली में रायता क्यों फैलाना है? And it is so not about the thali. You're getting my point, right? So many amazing things we have in our life. इतनी सारी blessings हैं हमें, पर वो एक चीज़ में थोड़ी सी गड़बड़ ऊंच नीच हो जाए, हम वहीं अटक जाते हैं, बाकी की चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। नो, वो नहीं करना। इट्स ओके अगर एक चीज़ ख़राब हो गई है या फिर आपके यू नो पर्सपेक्टिव के हिसाब से नहीं गई है, इट इज़ नॉट अलाइनिंग विथ व्हाट यू एक्सपेक्टेड, यू नो, तो उसकी वजह से बाकी की चीज़ों को इग्नोर करना इज नॉट ओके। स्टे ट्यून्ड एंड जीव इन दिस।

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio 116.3 FM. Tanisha aapke sath bindaas morning chal rahe hain. Haber.
2: Radio Olive presents Blackboard Stories.
1: बड़ा ही आसान सा सवाल है कि आई एम बिटवीन 6 and 8 बट आई एम नॉट 7 व्हाट एम आई मैं आई एम बिटवीन 6 and 8 बट आई एम नॉट 7 व्हाट एम आई इसका जवाब आपने मुझे दे देना है 3311063 पर यू कैन आल्सो कॉल 4444104063 पर आई एम बिटवीन 6 and 8 But I am not 7. So what is it? ये बताएं. 6 और 8 के बीच में है पर 7 नहीं है. तो बताएं मैसेज कीजिए 3311063 पर. फिलहाल भेज रही हूँ एकदम नया नया गाना फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर फॉर यू. खोसला रघु की आवाज में बेवजह न सामने आया करो. ब्यूटिफुल ट्रैक इट इज यार. स्टे ट्यून्ड एंड्रिया बिंदास मेरी जान.

0: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
1: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
0: योर स्पेशल ऑफर?
1: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
0: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
1: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
2: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।

0: टास मॉर्निंग, टास मॉर्निंग हर जीत तनीशा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड इट टुडे

इतिहास की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

बादशाह और अरिजीत सिंह की आवाज में सोलमेट, ये काफी अनएक्सपेक्टेड एक कोलैब था। आई मतलब मैं अपने वर्स्ट नाइटमेयर में भी नहीं सोच सकती थी कि अरिजीत सिंह और बादशाह का कोलैब होगा और इतना खूबसूरत प्रोडक्ट निकल कर आएगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक, और इतने प्यारे लिरिक्स हैं इसके, एंड जो बादशाह का रैप है, फॉर अ चेंज इट्स एक्चुअली नाइस, है ना। यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम 3 चैनल के साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहा है यहां पर। रेडियो ऑलिव प्रेजेंट्स ब्लैकबोर्ड स्टोरीज। So, आज का मेरा सवाल था कि आई एम बिटवीन 6 and 8 बट आई एम नॉट 7, और देर नहीं लगी मुझे जो यहाँ आंसर्स की लाइन लगी है एकदम करेक्ट वाले, वो भी सबसे पहले प्रशांत जी का मैसेज आया है, फिर केसर जी का, देन शमी वाज देयर, राहुल, आदिल, सुमान, शहजाद, थैंक यू सो मच गाइज, एंड यस द करेक्ट आंसर इज एंड। और इट इज सो मच फन, आई आस्क्ड सच काइंड ऑफ क्वेश्चन टू माई कॉलीग्स कुछ दिन पहले, एंड दे वर लाइक तनीषा क्यों, Why are you doing this?

0: मुसाफिर
1: बिल्कुल बस अभी आने वाला है ये गाना है मुसाफिर कैफे किस किसने देख लिया है जरा मुझे बताइए मैसेज करके 3311063 पर यार वो होता है ना कोई सीरीज आप देखते हैं कोई मूवी आप देखते हैं एंड यू एब्सोल्युटली लव्ड इट अब आप उसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं बिकॉज द इमोशंस यू फेल्ट व्हाइल यू वर वॉचिंग इट तो उसके बारे में बात करना भी तो ज़रूरी होता है ना वो एड्रेस करना भी ज़रूरी होता है बट अगर आपके आसपास किसी ने ना देखी हो तो आप किससे बात करेंगे तो मैं जानना चाहती हूँ क्या आपने देख लिया है मुसाफिर कैफे

बद्री की दुल्हनिया इज ऑल्सो ऑन द वे और अरिजीत सिंह और जसलीन रॉयल भी इंतजार कर रहे हैं. और देखो भाई रावण कैसी भी मूवी हो उसका साउंड ट्रैक तो कमाल था यार.

जी ये सारे कमाल के गाने आप सुनने वाले हैं इस घंटे में, और भी बहुत सारे सरप्राइजेज हैं, सब बता दूंगी तो फिर कैसे चलेगा यार, थोड़ा एक सरप्राइजिंग एलिमेंट होना चाहिए राइट। और फिलहाल भेज रही हूँ काफी है फ्रॉम मुसाफिर कैफे एंड आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर मैसेजेस 3311063 पर बताइए हैव यू वॉच्ड मुसाफिर कैफे येट और नॉट। स्टे ट्यून्ड टू रेडियो ऑल ऑफ जियो बिंदास मेरी जान।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ओलिव पे।

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 हर जेस्टन निशा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today. Kailan.

0: Tanisha. Badrinath ki Dulhania se title track only on Radio 106.3 FM. Tanisha, aapke saath bindaas morning chal raha hai yahan par. So right now the weather is 35 degrees and it feels like 45 degrees. You know the math doesn't math anymore. So abhi maine give up kar diya us pe. Aaj ka jo highest temperature hai wo 41 ja sakta hai aur lowest 34 ho sakta hai. Wind 7 kilometers per hour ki raftaar se chal rahi hai and it is crazy humid. So please apna khayal rakhe meri jaan. Bahar na hi nikle to behtar hai par काम तो करना होता है बाहर तो निकलना पड़ता है सो यू नो स्टे हाइड्रेटेड कीप इलेक्ट्रोलाइट्स वाटर विद यू ऑलवेज कहीं भी जा रहे अपने साथ रखे उसे और खाना लाइट खाना खाएं क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा परेशानियां चल रही हैं उसके बारे में हम बात करेंगे कुछ देर में आई जस्ट वॉन्टेड टू रिमाइंड यू कि आप बहुत इंपॉर्टेंट है सो प्लीज़ अपना ख्याल रखा कीजिए और बार बार के सनस्क्रीन लगाना है दैट इज़ तो लाइक नॉन निगोशिएबल एट ऑल समझ रहे हो जी सेंडिंग जबरदस्त हिट योर वे हीरिए इन द वॉइस ऑफ अरिजीत सिंह एंड जसलीन रॉयल स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास मेरी जान
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है

0: Tanisha.
1: धूम टू से सुना आपने ये गाना ओनली ऑन रेडियो 106.3 FM तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर. एंड एज आई सेड कि फूड की बात हम कुछ देर में करेंगे क्योंकि टेम्परेचर इतना क्रेजी हो रखा है. सो मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने भी कुछ फूड सेफ्टी टिप्स जो है हमसे शेयर किए हैं इस समर में कि यू नो फूड पॉइजनिंग से आप बचें और फूड स्पॉइलेज से बचें. सो जब भी खाना प्रिपेयर कर रहे हो दो दीज आर बेसिक थिंग्स वी ऑल नो इट्स जस्ट अ रिमाइंडर मेरी जान. सो वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली बिफोर हैंडलिंग द फूड. जो भी रॉ और कुक्ड फूड है उन्हें अलग अलग रखें टू अवॉइड कंटेमिनेशन. ठीक है. और जो फ्रोजन फूड है उसे अच्छे से थॉ करें इनसाइड द रेफ्रिजरेटर ना कि उसको रूम टेम्परेचर पर रखें. Yes, and if you have vomiting or diarrhea, avoid preparing food for others because you know there is a chance ki contamination ho sakta hai us food mein and others might also get that. So please avoid that. Jab bhi store kar rahe hain khana, keep refrigerated food at 4 degree Celsius or below. जो गरम खाना है उसे 65 डिग्री सेल्सियस या फिर अबव पर रखें. एंड डू नॉट लीव योर फूड अनरेफ्रिजरेटेड फॉर मोर देन 2 hours. ठीक है. डोंट फ्रीज फूड दैट हैज ऑलरेडी बीन थॉड एंड रेफ्रिजरेट लेफ्ट ओवर्स प्रॉम्प्टली. और साथ में जो भी ऑर्डर कर रहे हैं तो ऑर्डर ओनली फ्रॉम द लाइसेंस रेस्टोरेंट्स. हॉट फूड शुड अराइव हॉट एंड कोल्ड फूड शुड अराइव कोल्ड. इस चीज का ध्यान रखें कि टेम्परेचर क्या चल रहा है उस खाने का. एंड मेक श्योर फूड इज प्रॉपरली सील्ड एंड रैप टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन. ये बहुत सिंपल सी बेसिक चीजें हैं जो हम सबको पता है बट इट्स जस्ट अ रिमाइंडर बिकॉज राइट नाउ फूड पॉइजनिंग के बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं कतर में ड्यू टू दिस समर हीट. एंड उसके लिए मिनिस्ट्री इज डूइंग अ लॉट बट हमें भी अपना ख्याल रखने की जरूरत है. ठीक है. और आप बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात मत भूलिएगा. अर्जुन रेडियो वाले जियो बिंदास.

0: Delisha.
1: दर्शन रावल की आवाज में माइक जिन्ना सुना ब्यूटीफुल ट्रैक ऑन योर रेडियो 11.3 एफएम तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर एंड लेके आ गई हूँ मैं वर्ड ऑफ द डे फॉर यू.
2: ये है चलती फिरती डिक्शनरी.
1: सो आज का जो वर्ड है इट इज स्कीडाडल. एस के ई डी ए डबल डी एल ई. स्कीडाडल का बेसिकली मतलब वो होता है जो हम जैसे ही हमारा ऑफिस का टाइम खत्म होता है, मतलब अगर आपके ऑफिस के खत्म होने का टाइम 6 PM है तो 5:55 और से 5:40 से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं कि कैसे 6 बजे जैसे ही टाइम आया और मैं भागू. जी हाँ, टू रन अवे क्विकली यूजुअली यूज्ड व्हेन यू लीव इन अ हरी बिफोर एनीवन नोटिसेस. बॉस को ना पता चल जाए, मैनेजर को ना पता चल जाए, वरना एंड मोमेंट पे काम दे देगा यार, चुपचाप से पतली गली से निकल लो. दैट इज स्कीडाडल. एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ अस डू दैट राइट. स्कीडाडलिंग एज सून एज द क्लॉक हिट्स एंड टाइम ऑफ योर शिफ्ट राइट. हम सब स्कीडाडल करते हैं. ऑन दैट नोट सेंडिंग एन अमेजिंग ट्रैक योर वे. स्टे ट्यून्ड.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।

0: आरजे तनीशा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड इट टुडे

0: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
1: Hi everyone, this is Benny Deol here.
2: Benny Deol here.
1: Olive Radio 106.3.
2: Jio Bindas.
3: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.
4: Radio Olive, I'm the number one. Abu Hogi, Abu Hogi. Bindas Morning.
5: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा.
6: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: तनिषा
1: राहत फतेह अली खान साहब की आवाज में दिल तो बच्चा है जी फ्रॉम द मूवी इश्किया। व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक यार। और कुछ देर पहले मैंने बात करी थी कि स्किडाडल की, कि हम सब करते हैं जैसे ही हमारा ऑफिस का वक्त खत्म हो रहा होता है, वी आर रेडी टू स्किडाडल फ्रॉम द ऑफिस सो दैट मैनेजर कहीं पकड़ ना ले और काम देने के लिए। एंड मोहम्मद यूसुफ खान साहब भी अग्री कर रहे हैं पूरी तरह से मुझसे कि हम सब करते हैं जैसे ही वक्त खत्म होने वाला होता है ऑफिस का। सही बात है। वेल दिल तो बच्चा है जी गाना सुनते सुनते ना आई वॉज जस्ट थिंकिंग ऑफ ओल्ड मेमोरीज ऑफ माइंड, लाइक मैं पीछे चली गई थी ऐसे स्कूल टाइम में, और मुझे ना लिखने में बड़ा जोर आता था और मुझे टीचर्स बहुत ऐसे डांट लगाती थी कि तनिषा इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, दिस इज़ नॉट प्रॉपर। और इतना ज़्यादा उस पर काम किया था कि एक बार इंग्लिश की तो चलो ओके है, हिंदी की हैंड राइटिंग में इट वॉज अ कॉम्पिटिशन और मैं फर्स्ट आ गई थी। मुझे खुद भरोसा नहीं हुआ भाई साहब इस बात में, लेकिन देन नाउ आई वॉज थिंकिंग कि इतनी हैंड राइटिंग मार मार के इम्प्रूव करवाई है, क्या फ़ायदा है अब उसका, टाइप ही कर रहे हैं रोज बैठ के। और अब जब लिखना पड़ता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि पेन को कैसे पकड़ना है यही भूल चुके हैं, बहुत ही बुरा हाल हो गया यार। डू यू सफर फ्रॉम दिस टू या फिर मेरे साथ ही कुछ दिक्कत है, बताएं मुझे 3311063 पर। सेंडिंग कूल सॉन्ग ऑफ द आवर फॉर यू, सुन रहे सजनिया इन द वॉइस ऑफ अली जफर, स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास। रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: तनिशा।
1: तीन दिग्गज एक साथ, कुणाल कांजावाला, शान और के की आवाज में साधिया मूवी से ओ हम दम सुने और ये ब्यूटीफुल ट्रैक ऑन ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। तनिशा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर। एंड कुछ देर पहले मैंने जो बात करी थी कि यू नो बचपन में इतना डांट डांट के मार मार के टीचर्स ने पेरेंट्स ने हैंडराइटिंग ठीक करवाई थी, नाउ वी डोंट राइट एनीथिंग एट ऑल। लाइक फॉर मंथ्स आई गो कि मैं तो लिख ही नहीं रही हूँ कुछ भी, टाइपिंग ही चल रहा है या तो फोन पे या लैपटॉप पे, राइट? तो नहीं याद रहता। एंड व्हेन आई सेड कि मैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ठीक तरह से पेन कैसे होल्ड करना है टू राइट, तो ये बात थोड़ी सी इकबाल साहब को ठीक नहीं लगी। कह रहे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अगर आप कह रहे हो कि लाइक यू वर द टॉप परफॉर्मर, यू गॉट दिस फर्स्ट प्राइज इन द हिंदी राइटिंग कॉम्पिटिशन, देन हाउ कैन यू फॉरगेट? इट हैपन्स, इट्स बीन लाइक 10 years और सो दैट आई हैव बीन वर्किंग और नहीं है मेरा लिखने का काम। मे बी कभी कभी सिग्नेचर करनी होती है, दैट्स ऑल, अदरवाइज एवरी थिंग इज डिजिटल नाउ। सो मैं तो भूल गई, मे बी दैट्स अ प्रॉब्लम विद मी एंड ऑब्वियसली आई वॉज शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। मे बी इकबाल जी के साथ ऐसा नहीं होता है, वेल एंड गुड फॉर यू। यहाँ पे मोहम्मद यूसुफ खान साहब का भी मैसेज आया है कि जब मैं स्कूल और कॉलेज में था तभी मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी हुआ करती थी, बट अब तो नहीं है बिकॉज अभी लिखने का कुछ राय नहीं। एग्जैक्टली, बस टाइपिंग ही चल रही है। एंड राइट नाउ उनकी डॉटर की हैंड राइटिंग बहुत खूबसूरत है एंड उन्हें भी सर्टिफिकेट मिला है हैंड राइटिंग में मेरी तरह। अरे जान के बड़ी खुशी हुई। एंड वी हैव मेट यूसुफ जी की डॉटर, शी इज़ सो अडोरेबल, बहुत प्यारी है एंड आई होप कि मेरी तरह उनको आगे चलकर ऐसे पेन पकड़ने में या लिखने में दिक्कत ना हो, वो उन्हें याद रहे कि मेरी हैंड राइटिंग बढ़िया है एंड आई नीड टू कंटिन्यू दिस एंड आई ऑल्सो ट्राई नाउ, यू नो, क्योंकि कुछ वक्त पहले की बात है, मुझे कहा कि ये चीज़ नोट कर लो, वी वर इन अ मीटिंग एंड मैंने अपनी हैंड राइटिंग देखी एंड आई वॉज शॉक्ड कि भाई इतनी गंदी कैसे हो सकती है किसी की, पहले तो बड़ी सुंदर हुआ करती थी। सो नाउ आई ट्राई, यू नो, कि रोज़ थोड़ा बहुत कुछ लिखूँ, रोज़ तो नहीं हो पाता, बट आई वंस इन अ ब्लू मून आई पिक माई डायरी एंड देन आई राइट समथिंग सो दैट वो एक मेनटेन रहे, मुझे ये तो याद रहे कि मुझे पेन कैसे पकड़ना है, ठीक है ना इकबाल जी? Sending Gungroo from the movie War, Arijit Singh, Shilpa Raghi, Vazmi. Stay tuned, Andrew Vindas.

0: listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: यार मुझे 10 GB फ्री मिला मेरे हाला रिचार्ज के साथ।
2: क्या कैसे?
1: बस रिचार्ज करो और तुम्हें फ्री डेटा या मिनट्स मिलते हैं। कल मुझे 50 फ्री मिनट्स मिले।
2: रोज मिलता है क्या?
1: हाँ रोज मिलता है।
2: मैं भी अपना हाला नंबर रिचार्ज कर रहा हूँ।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में।
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
4: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: Denisha.
1: Denisha. Hour upon two से अरिजीत सिंह की आवाज में काफी सैड हो गया यार माहौल. You're listening to Radio All of 106.3 FM. Denisha आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर. सैड माहौल को एकदम अपबीट कर दूंगी मैं क्योंकि मेरे हाथ में गोल्ड लग गया है. गोल्ड एज इन लाइक लिटरली गोल्ड नहीं, बट आप सुनो, यू विल रियलाइज. सो हर रोज हमें ये सोचना पड़ता है ना कि यार ब्रेकफास्ट के लिए क्या बनाऊँ, लंच के लिए क्या बनाऊँ, डिनर के लिए क्या बनाऊँ. ये जो एक चीज़ होता है, ये जो डिसीजन लेना होता है, ओ माई गॉड, आई थिंक पूरे दिन का सबसे डिफिकल्ट टास्क मेरे लिए यही होता है. And every day I just have to look for the ingredients which I have in my, pantry or fridge mein jo jo rakha hai. Phir main mummy ko call karti hu, mama ye sabzi padi hai, iske sath main kya bana sakti hu. So, you know, roz mamma ko call jata hai ye poochne ke liye. But abhi mamma ko bother karne ki zarurat nahi padegi because I found some really cool websites. There is supercook.com. जहाँ पर आपके पास जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे आप उसमें ऐड करो, वो आपको बता देगा कि ब्रो यू कैन मेक दिस दिस आउट ऑफ दिस. फुल रेसिपीज आपको मिलेंगे. अगर एक दो इंग्रेडिएंट्स नहीं है तो आप वो भी बताओ, तो वो उसके हिसाब से उस रेसिपी को चेंज कर देगा. देन देर इज माई फ्रिज फूड. आपने उसमें अपने इंग्रेडिएंट्स जो हैं वहाँ पे एक लिस्ट है, उसमें आपने टिक मार्क करने हैं और उसको बोलना है रेसिपी ढूंढो. इसके लिए कुछ भी एकदम बढ़िया सा क्विक वाला जो ऑप्शन है ना, वो ये वाली वेबसाइट आपको दे सकती है. देन देर इज बिग अवन. ये तो बहुत अमेजिंग है यार. अगर कुछ लेफ्ट ओवर पड़ा है, काफ़ी टाइम से कोई चीज़ आप ले आए बट आप यूज़ ही नहीं कर पा रहे हो उसको, आपको समझ में नहीं आएगी कि किस तरह से यूज़ करना है, तो दिस विल हेल्प यू. आपको कोई रैंडम लेफ्ट ओवर, आइदर इट इज़ अ स्पाइस और अ ग्रेन और पल्स, कुछ भी है, उसके साथ एक बढ़िया सी रेसिपी दे देगा. देर इज़ गम्बो ऑल्सो, देर इज Chef GPT also. So all these amazing websites are out there. तो ये जो हम fatigue ले रहे हैं ना रोज रोज की, यार क्या बनाना है आज, क्या बनाऊँ यार, ये नहीं है मेरे पास, वो रखा हुआ है पर वो नहीं है. So ये सारा का सारा stress इन्हें दे दो. जी हाँ, ये हमें full ऐसे recipe देंगे, हमने बस cook कर लेना है, एकदम आसान हो जाना है काम. I know thank you बोलना चाहते हो, कोई बात नहीं, आपके लिए एक बढ़िया गाना भी भेज रही हूँ मैं. Stay tuned to Radio All of 106.3 FM. Jio, बिंदास मेरी जान.

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

0: Danisha.
1: Honey singer Jasmine Sandals की आवाज में किक मूवी से यार ना मिले only on Radio 11.3 FM Danisha आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर
2: और ट्रेंड में क्या है What's trending?
1: So trend में right now crazy marketing stunts. So there is this new series on Netflix or is it a movie? It's a movie, I guess. Yeah, it's a sci-fi horror movie, The Last House. And uske promotion ke liye Netflix has gone on another level. So unhone ek billboard to banaya. Us billboard mein actually they made a, you know, chotu sa space like a home. Aur wahan pe ek bande ko trap karke rakha for 3 days. Not like trap, obviously he was hired for that job, but people went crazy because nobody knew about this really. And jo bhi passerbys the, when they saw that billboard, sab dar gaye and everybody tried to help. Ek influencer ne to aisa video banaya ki bhai maine pizza order kiya hai, ab aap isko upar tak pahunchao, kaise pahuncha sakte ho? You know, they are trying to call the authorities, somebody is stuck there in the billboard. And it was crazy, but kamal ka marketing strategy tha. Everybody has been talking about it. And even before the billboard came, na, maine jab iska trailer dekha tha, it is amazing. So it is about how an entire society, a colony, which says the entire world also, वो ना स्टक हो गए अपने घर के अंदर. अब वो क्या हुआ है, कैसे हुआ है, वो सब जानने के लिए आई एम नॉट गोना गिव यू एनी स्पॉयलर्स ओवर हियर. आपने जाकर देखना, इट इज़ ऑलरेडी आउट देयर ऑन नेटफ्लिक्स, द लास्ट हाउस. काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है, मैंने खुद अभी तक नहीं देखा तो मैं क्या ही स्पॉयलर्स दूंगी, बट आई विल बी वॉचिंग इट. मैं देखूँ उससे पहले आप देख लो, वरना देखो मैं तो आके दे दूंगी स्पॉयलर्स. कुछ देर में आ रहा है भाई तेरा स्टार ऐसे ये वाला गाना.
3: रुक जाओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा.
1: DDL जैसे ये, और फिर ये तो मेरा एंथम है, मैं तो करती ही रहती हूँ सैटरडे. नहीं, मैं थर्सडे करती हूँ ऐसे. And all these amazing tracks are coming up your way. Stay tuned and Jivindas Mirjan.

सोनी कमरवाल का याग्निक की आवाज में फिर भी दिल हिंदुस्तानी मूवीज से बन की तरह जोगी ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम। तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर। टेक टॉक में बात करते हैं पहले व्हाट्सएप की, दोनों की बात करेंगे आज हम, इंस्टाग्राम की भी और व्हाट्सएप की भी। सो व्हाट्सएप पे आई डिड नॉट नो कि ये फीचर है, ठीक है, यू कैन लॉक अ चैट। सो आपकी व्हेन यू ओपन दी व्हाट्सएप आपको सारी की सारी चैट्स दिख जाती है, ऊपर ही आर्काइव का ऑप्शन आ जाता है अगर आपने कोई चैट आर्काइव करके रखी है, पर उसमें ऐसी कोई लॉक वाली सिक्योरिटी वाली बात नहीं है, किसी ने देख रही होगी तो वो आर्काइव में जाके देख ही लेगा, ठीक है। बट नाउ देर इज़ दिस ऑप्शन कि आप उस चैट पे थोड़ा ज़ोर से प्रेस करके रखेंगे तो वो तीन डॉट्स आएंगे अपने, उनमें लॉक का ऑप्शन है, यू कैन लॉक दैट चैट विद अ पासवर्ड। वो आपके अलावा अगर पासवर्ड किसी को नहीं पता है तो कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है। एंड आई डिड नॉट नो अबाउट इट, दो आई डोंट नीड इट, बट पता तो होना चाहिए ना। एंड इंस्टाग्राम पे सीरीज का अपडेट आ गया है, एज इन यू नो वीडियोज में व्हेन क्योंकि माइक्रो सीरीज आर इन ट्रेंड राइट नाउ, एवरीबडी इज ट्राइंग टू मेक सम ऑफ दी अदर काइंड ऑफ सीरीज ओवर देयर ऑन इंस्टाग्राम, फुल ऐसे एपिसोड वाइज चल रहा होता है। सो वो पूरा एक कैटेगरी में सीरीज में आप डालकर रख सकते हैं, सो दैट दी ऑडियंस डजंट हैव टू यू नो गो थ्रू इंटायर प्रोफाइल और इतना वक्त जाया करते हैं फिर गिव अप कर देते हैं कि भाई नहीं देखना, जाने दो, रहने देते हैं। सो वो वाली चीज नहीं होगी अगर आप सीरीज में डाल देंगे। बट आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस डेजा वो फीलिंग विद दिस अपडेट। आई फील कि इंस्टाग्राम में सीरीज का ऑप्शन पहले था, जब वो IGTV थी था ना तब, आई थिंक, आई डोंट नो, आई विल हैव टू लुक आउट फॉर दैट बिकॉज मुझे लग रहा है कि ये था। लेट्स सी, अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा मुझे, अदरवाइज मैं तो देख ही रही हूँ। स्टे ट्यून्ड एंड जीवन दास।

0: Tanisha.
1: Tanisha. You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहा है यहाँ पर. 9:51 हो चुका है क्लॉक में और मेरे जाने का वक्त हो गया है. कशिश आती ही होगी आपकी लाइफ को और भी अमेजिंग बनाने के लिए, बट आपने ध्यान रखना है कि स्टे हाइड्रेटेड. खाना जो भी हमें फूड इंस्ट्रक्शन सेफ्टी इंस्ट्रक्शन अभी मिनिस्ट्री से भी मिले हैं, प्लीज़ उनका ख्याल रखें क्योंकि बहुत ज़्यादा फूड पॉइजनिंग के केसेस आ रहे हैं. एंड इतना सफ़र नहीं करने का है, ख्याल रख लेते हैं पहले, है ना. प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, राइट. सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ इट. और हमें मिस कर रहे हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं 3311063 पर. ऑल्सो इफ़ यू हैवन फॉलोड अस ऑन सोशल मीडिया येट, radioolive.qa इज़ द हैंडल, फॉलो कीजिए. इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, स्नैपचैट, यूट्यूब, एवरीवेयर, सब जगह फॉलो कर लो. ऑल्सो यस्टरडे वी पोस्टेड अ वेरी क्यूट वीडियो इंटरनेशनल कैट डे के लिए. आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद सारा माकेश एंड वो कॉन्वर्सेशन आपको यहाँ रेडियो पे भी जल्दी सुनने को मिलेगी, पर अभी छोटा सा एक ग्लिम्स वहाँ वीडियो में आपको नजर आएगा, तो आप जाके वो चेकआउट कीजिए. और उसमें बाकू भी है जो कि सारा की फर्स्ट कैट थी एंड कैट है. एंड इतना अमेजिंग ना, मतलब उसके साथ इतना मज़ा आया. या आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद बाको, वो सब आपको वीडियो में देखने को मिलेगा. फिलहाल चलती हूँ, मिलते हैं कल सुबह 6 बजे. अपना ख्याल रखिएगा. हैव एन अमेजिंग डे टू योरसेल्फ. स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास मेरी जान.

0: मेरे छोटे एड्रिक्स आएंगे
1: आएंगे नहीं आ गए
2: ऑलिव शॉर्ट ब्रेक
3: This hour is brought to you by Homestar Us. We complete your home.

सोनू निगम अलका याग्निक की आवाज से आज शो की शुरुआत हमने की है। तो देखिए बस यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि अब शो ऐसा ही सुरीला जाए, बढ़िया जाए, अच्छा जाए। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिवर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइव मस्त है लेकर आ गई, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा सा मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा बनाने की कोशिश जो है वो हम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड यार मुझे ना कभी कभी ऐसा लगता है कि आप जब अपने फेवरेट कपड़े पहनते हो तो आपका मूड ऑटोमेटिकली थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। अब देखो यार, कल जो है मेरा AC उतने अच्छे से काम नहीं कर रहा था तो मैं उतने अच्छे से सो नहीं पाई, लेकिन मैं आधी नींद में हूँ, मुझे थोड़ी सी नींद आ रही है, थोड़ी सी डिजीनेस है, लेकिन आज मैंने अपना फेवरेट पीस ऑफ गारमेंट पहना हुआ है तो उससे मेरी बॉडी में जो है एक एनर्जी का दौरान जो है वो बना हुआ है। अब देखो ये जो ब्लेजर है जो आज मैंने पहना हुआ है, अगर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पर जाके मेरी स्टोरी देख लेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जो ब्लेज़र है ये वो ब्लेज़र है जब मैं पहली बार ऑन एयर हुई थी मैंने तब पहना था। मेरी किसी भी स्पेशल ओकेशन पर मैं चाहूँ या ना चाहूँ ये वाला ब्लेजर मेरे साथ होता ही है, तो बस आज मैंने इसी जो है आस के साथ ये ब्लेजर पहना है कि कुछ ना कुछ तो अच्छा हो ही जाएगा। अब क्या अच्छा होगा उसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, लेकिन लेकिन लेकिन बस जो है होप पे जो दुनिया है वो कायम है तो बस होप करते रहते हैं। फिलहाल टॉक्सिक मूवी का एक ट्रैक जो है वो आपके रेडियो सेट पर आ रहा है, सो सिर्फ गाने जो है वो टॉक्सिक मूवी के होंगे, ना लोग टॉक्सिक होंगे हमारे जीवन में, ना बातें टॉक्सिक होंगी, तो सारी टॉक्सिसिटी को हटा दो और अमेजिंग वाले गाने जो है वो एंजॉय करो वॉल्यूम बढ़ा के। मैं हूँ आपकी कशिश, लाइफ मस्त है शो में बहुत सारी अमेजिंग बातें अभी हमें करनी है लेकिन इन गानों के उस पर, सो स्टे ट्यून्ड रहो और आपकी कशिश के साथ कहते रहो जी गोविंदास।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम।
1: टाइम चेक brought to you by दानादल पहाड़ द अल्टीमेट कतरी एडवेंचर सुख वाकिफ अलखोर।
2: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है, इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 10:15, दैट इज 10:15। स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास।
3: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
4: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
3: योर स्पेशल ऑफर?
4: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है, ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
3: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
4: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
3: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
5: हाय, दिस इज अमिताभ बच्चन एंड यू आर लिसनिंग टू

0: अरिजीत सिंह की आवाज में ये ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो एफएम। वेलकम जी, गुड मॉर्निंग, मैं हूँ आपकी कसर शो आपके लिए लाइफ मस्त लेकर आ गई, जो आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। अब देखो यार, कल जो है वीकेंड, परसों और कल जो है सेलिब्रेट कर लिया हमने, एंड उसके बाद मैंने आपको ये जगह भी बता दी थी जहाँ पर आप मतलब खुद को गर्मी से टॉर्चर किए बिना जो है घूमने के लिए जा सकते हैं। लेकिन अब आप देखिए, ऑफिस तो आपको इस गर्मी में जाना ही पड़ेगा। अब वहाँ आपको फन जो है हो या ना हो, आपको एंटरटेनमेंट मिले या ना मिले, इसीलिए बेटर है कि आप जो है पहले से प्रिपेयर होके जाइए। तो मैं आपको मौसम का माहौल जो है, मौसम का मामला जो है, वो मैं अभी से बता देती हूँ। 39 डिग्री सेल्सियस इस वक्त का टेम्परेचर हो रहा है दोहा में, एंड मोस्टली सनी रहने वाला है आज, एंड हाईएस्ट टेम्परेचर आज का 40 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, एंड लोएस्ट टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होने वाली है। मुझे आजकल ऐसा लगता है कि हमारी अर्थ पे ना ह्यूमैनिटी थोड़ी कम होती जा रही है, एंड ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। सो बस इसके लिए कुछ करते हैं, एंड साथ में जो है अमेजिंग वाले गाने जो है वो सुनते हैं, क्योंकि इस हीट को बीट करने का एक ही तरीका है और वो है कूल सॉन्ग ऑफ द आवर जो है इन्जॉय करना। सो फिलहाल एक बहुत ही अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे इन्जॉय करो। बाकी बातचीत जो है वो जारी रखेंगे, स्टे ट्यून और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।

ऑफ कोर्स गाइस, आपकी ये दिल भरा जो है वापस आ चुकी है आपके लिए शो लाइफ मास्टर लेकर। वेलकम जी, मैं हूँ आपकी कशिश 106.3 रेडियो ऑलिव पर। आप मेरे साथ लाइफ मास्टर शो जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, जहां पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बना रहे हैं हम। अब देखिए यार, लाइफ में मुझे तो ऐसा लगता है मेरे लिए तीन चार चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला ऑक्सीजन जीने के लिए, उसके बाद पानी, और उसके बाद मेरे कपड़े, एंड इन सबसे ऊपर अगर कोई चीज़ आती है तो वो है चाय। चाय करक इसे जो बोल लो, लेकिन उसके बिना ना मेरी आँख खुलती है और ना ही मैं सोने के लिए जा पाती हूँ। मुझे खाने से पहले और खाने के बाद चाय चाहिए होती है, मुझे सोने के पहले जो है चाय चाहिए होती है, और उठने के बाद चाय चाहिए होती है। मुझे हर चीज़ के पहले चाय चाहिए होती है। मेरे लाइफ के हर डिसीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चाय। मैं जो है ये कैसे डिसाइड करूंगी कि मुझे मम्मी का दिखाया हुआ लड़का जो है वो पसंद आ रहा है, अगर उसे चाय पसंद होगी। मुझे कोई भी अपना इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होगा, मैं कहाँ पे डिसाइड करूंगी? चाय पीते पीते डिसाइड करूंगी। हमारे घर की सारी गॉसिप कहाँ होती है? चाय पीते पीते होती है। ऑफिस की सारी गॉसिप कहाँ होती है? चाय पीते पीते होती है। सो चाय जो है वो एक ऐसा एलिमेंट है हमारी लाइफ का, जिसे अगर निकाल दो तो फिर लाइफ में लाइफ ही नहीं बचती। लेकिन अभी एक रिसर्च जो है मैं इंस्टाग्राम पे पढ़ रही थी, जिसके बाद रिसर्च के ऊपर से मेरा जो भरोसा है वो बिल्कुल उठ गया। और अब शायद हो सकता है कि मैं रिसर्च के बारे में थोड़ा कम भी बात करूं, क्योंकि रिसर्च ये कैसी कर दी इन्होंने। इन लोगों ने कहा है कि ये जो दूध वाली चाय होती है, इसे एसोसिएट किया जाता है लोनलीनेस से, एंजाइटी से और डिप्रेशन से। बताओ यार, ऑफ कोर्स इन्हें रिलेट किया जाएगा इन तीनों चीज़ों से। दूध वाली चाय को अगर एंजाइटी डिप्रेशन से रिलेट ना करो तो फिर किसको करो? एंजाइटी, डिप्रेशन, पैल्पिटेशन, पैनिक अटैक, ये सब जो है दूर भाग जाता है जब मैं चाय पीती हूँ। अब मुझे नहीं पता आपका क्या हिसाब किताब है, या बाकी लोगों के लिए दूध वाली चाय या जो चाय है वो कितना मैटर करती है, लेकिन मेरे लिए तो देखो बहुत करती है। एंड मेरे सर्कल पे जितने लोग हैं वो शायद मेरे सर्कल में इसीलिए हैं क्योंकि हम लोग चाय पे चर्चा जो है सर्कल बना के करते हैं। तो अब अगर आप मुझे बता सकते हैं कि यार आपको क्या लगता है कि क्या लोनलीनेस का साइन है अगर आपको दूध वाली चाय पसंद है, तो ये रिसर्च जो है इस पे आपको कितना भरोसा है, कितना सही लगता है आपको कि यार हाँ कशिश देखो बात तो सही है, जब इंसान अकेला होता है ना तो वो चाय पीता है। यार मैं अकेले ही चाय पीना चाहती हूँ ताकि मेरे चाय में हिस्सेदार ना आ जाए। फिलहाल जो है चाय के बिना मेरा जिया नहीं लगता है। अब चाय का इतनी बार नाम ले लिया है तो मैं जाती हूँ चाय पी के आती हूँ। फिलहाल तलाश मूवी से जिया लागे ना गाना जो है आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे इंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो।

लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ऑलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।

0: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन।
1: हाय, दिस इज विपाशा बासु।
2: हाय, मैं राजकुमार राव।
3: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा।
4: हाय, दिस इज दिशा पार्डी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो 106.3 FM।

0: आपने ये ट्रैक आपने एंजॉय किया और मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी जब मुझे ये रियलाइज हुआ कि इस गाने के सारे लिरिक्स मुझे याद है। ये इंडिया में टिकटॉक जब बैन नहीं हुआ था उससे पहले के गाने हैं एंड इस पर इतनी सारी वीडियोस बनाई गई कि मैं क्या बताऊं। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल पर, मैं हूँ आपकी कशिश। शो आपके लिए लाइफ मस्त लेकर आ गई हूँ जो आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बना रहे हैं हम। अब देखिए यार, अगर स्ट्रेस को दूर भगाने की बात है तो एक जल्दी से क्विक ट्रिक मैं आपको बताना चाहती हूँ। सो आपको जो भी लैंग्वेज आपको आती है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, अरबिक, मलयालम, उसको छोड़कर जो लैंग्वेज नहीं आती है उस लैंग्वेज के गाने जो है वो इंजॉय करने हैं। सो उससे क्या होगा कि आपको लिरिक्स तो समझ नहीं आएंगे लेकिन आप वाइब करोगे, आपके ब्रेन को कहीं से भी कुछ भी पेन याद ही नहीं आएगा। सो ये ट्रिक एक बार ट्राई करो और बाकी फिलहाल ऑल फर्स्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर आर आपकी रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय करो।
1: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर
0: ये गाना। मैं हूँ आपकी कशिश, स्टे ट्यून्ड और कहते रहो जियो बिंदास।

0: Trek. Brought to you by Dana Tal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
1: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 11:12 दैट इज 11:12 स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास
2: हाय दिस इज एयर अमान लिसन टू माय सॉन्ग्स ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो बिंदास
3: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क

0: भाई मोहब्बत है मूवी की डिस्कशन शुरू कर दे और फिर वक्त गुजर जाए, ऐसा हम होने नहीं देंगे। मतलब मोहब्बतें एक ऐसी मूवी है जिसके साथ आप मतलब ऐसे हो ही नहीं सकता कि ये अगर आपके टीवी पे आ रही है तो आप बदल दो। बीच बीच में ऐश्वर्या राय घूमते घूमते आ जाएंगी, आपको मजा आ जाएगा। उसके बाद ये जो तीन लव स्टोरीज चल रही हैं उनमें आपको एक एक मतलब ऐसा लगेगा कि यार इन तीनों की एक एक अलग अलग मूवी बना दो यार, हमें आगे क्या हुआ देखना है, हमें और इन जोड़ीज के बीच में क्या हो रहा है वो देखना है। सो मोहब्बतें इज अ टोटल यू नो बढ़िया वॉच, मैं रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, मतलब ये तो आपको देखनी ही चाहिए यार, इट्स मस्ट। बाकी आज हम जो है को वर्कर्स पे बात करने वाले, यानी आपकी कलीग्स पे बात करने वाले, वो लोग जो आपके परिवार वालों से ज़्यादा आपके साथ समय बिताते हैं। आप अपने ऑफिस में कितना टाइम बिताते होंगे, 9 to 10 hours आपकी शिफ्ट होती होगी, उसके बाद आने जाने में आपको एक आध घंटा लगता होगा। तो इन शॉर्ट आप अपने कलीग्स के साथ, कोवर्कर्स के साथ अप्रॉक्सीमेटली 12 घंटे तो जो है बिताते ही होंगे साथ में। अब इन 12 घंटों में आपको उनकी आदतें, उनकी अच्छी आदतें, उनकी बुरी आदतें, उनका पसंद, उनकी नापसंद, सब कुछ आपको चीज़ें जो है पता चल जाती है। सो बस मुझे ऐसा लगता है कि इन कोवर्कर्स को भी अपनी फैमिली जो है वो कंसिडर करना चाहिए। अब मैं आज स्पेशली कोवर्कर्स की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आज है कोवर्कर्स डे। सो सेलिब्रेट कर रहे हैं हम आपके कोवर्कर्स को। सो जल्दी से जो है जाकर अपने कोवर्कर को, अपने फेवरेट कोवर्कर को जाके विश कर दो। एंड अलग अलग टाइप्स के कोवर्कर की हम बात करने वाले हैं। सो आप मुझे बताइए कि कौन से अलग अलग टाइप के कोवर्कर्स जो है वो एक ऑफिस में होते ही होते हैं। सो जल्दी से जाओ, मुझे मैसेज करो 3311063 पर। फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय करो। नंबर याद हो गया ना, 3311063। फिलहाल मैं चलती हूँ, ये गाने एंजॉय करके आओ, उसके बाद मैं बताऊंगी कि हमारे ऑफिस में किस किस टाइप के जो है कोवर्कर्स हैं।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

इस गाने में बोला क्या जा रहा है वो नहीं समझ आ रहा है, लेकिन वाइब बहुत अच्छी है, बिल्कुल हमारे ऑफिस की तरह। देखो यहाँ पे काम क्या होता है हमें समझ नहीं आता है, यहाँ पे लोगों का क्या इंटेंशन है हमारे साथ वो समझ नहीं आता है, लेकिन कई बार क्लीग्स अच्छे होते हैं, कोवर्कर्स अच्छे होते हैं ना, तो अपने आप अच्छी वाइब आने लग जाती है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने है। अब देखो यार, जैसे पांच उंगलियां एक समान नहीं होती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से पांच एम्प्लॉयज आप किसी भी ऑफिस से उठा लीजिए, पांच कोवर्कर्स उठा लीजिए, ये एक जैसे कभी नहीं हो सकते। इन सब में कुछ अलग अलग क्वालिटीज़ होती है। अब मैं कुछ आपको ऐसी क्वालिटीज़ बताने वाली हूँ जो ऑफिस में एक ना एक यू नो आपके कोवर्कर में ज़रूर होगी। सबसे पहली एक वो इंसान होगा जो हर बार ये कहता है कि यार चलो चाय पीने चलते हैं, चलो यार बहुत देर होगी चाय नहीं पिए, चाय पिए भी मुझे सांस नहीं आती है। दूसरा वाला होगा वो जो सबके लिए जो है खाना बना के लेकर आता है, मतलब जिसको खाना बनाने और खिलाने में इतना इंटरेस्ट होता है, जो आपके लिए टिफिन भर भर के लाता है एंड उसके टिफिन के लिए सब इंतजार करते हैं, अपने घर से चाहे कुछ भी लेकर आए लेकिन उसका टिफिन जरूर खाया जाता है। तीसरा टाइप का वो एम्प्लॉय होता है जो आप कितने भी सैड हो वो आपको जो है हंसा ही देगा, वो आपसे इस तरीके से बात करेगा कि आपको लगेगा भाई इसके जीवन में कोई दुख क्यों नहीं है, ये इतना खुश कैसे रहता है, उसकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम हो लेकिन आपको उसके माथे पे एक शिकन भी नहीं दिखेगी। वहीं ऑन द अदर हैंड एक और वो टाइप के भी आपके कोवर्कर होंगे जिन्हें लाइफ में सब कुछ मिला है लेकिन स्ट्रेस जो है वो हमेशा उनकी नाक पे बैठा रहता है, किसी बात का स्ट्रेस नहीं है तो इस बात का स्ट्रेस हो जाता है कि यार मेरा सिपर खाली हो गया है, मेरे बॉटल में पानी नहीं है, मैं क्या करूं। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो है कोवर्कर्स होते हैं। एक वो होता है जिन्हें बहुत नींद आ रही होती है, इनसे जब बात कर लो इनको लगता है कि यार मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत नींद आ रही है। आपके यू नो आपके भी ऐसे कोवर्कर्स होंगे जो इनमें से किसी कैटेगरी में फॉल करते होंगे, या कोई एक और नई कैटेगरी आपको पता होगी कि यार मेरे ना लाइफ में ऐसा कोवर्कर है जो हमेशा ये करता है, वो मुझे बता सकते हैं आप 3311063 पर जो है मैसेज करके, व्हाट्सएप करके। तो जल्दी से फोन उठाओ यार, मैसेज करो, देरी किस बात की है ना। 3311063। फिलहाल आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, सो वॉल्यूम बढ़ाओ, इन्जॉय करो और आपकी कशिश के साथ कहते रहो जियो बिंदास।

वही है जो मैं हर बात पे कह देती हूँ हाँ जी, क्योंकि मुझे जो है नो बोलना नहीं आ पा रहा। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल एफएम, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जो आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने के एटलीस्ट में देखो मैं कोशिश तो कर रही हूँ। अब मैंने आप लोगों से ये पूछा था कि यार देखो जैसे अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं हमारे जीवन में, वैसे अलग अलग प्रकार के लोग जो है वो होते हैं हमारे ऑफिस में भी, क्योंकि आज जो है वो कोवर्कर्स डे है। सो बस मैंने ये पूछा था कि आपके जो ऑफिस है उसमें किस किस टाइप के कलीग्स हैं। सो मुझे जो है मोहम्मद यूसुफ खान जी ने मैसेज किया है, कशिश माशाल्लाह आपके कलीग्स तो बहुत अच्छे हैं। देखिए ये तो मुझे भी पता है सभी इतनी किस्मत वाले नहीं होते, कुछ कंपनीज में तो काम का वक्त गुजारना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। उफ ये बातें ना ऐसे दिल पे लगी हैं, दिल पे। अस्मा जी जो है उन्होंने भी कुछ कुछ कहा जरूर है, लेकिन वो मेरे पहले वाले सवाल का जवाब अब दे रहे हैं। कोई बात नहीं, थैंक यू अस्मा जी, एटलीस्ट आपने मैसेज तो किया। ऐसे ही आप लोग भी मुझे मैसेज करके बता सकते हैं कि यार आप लोगों के पास जो है किस तरीके के कलीग्स हैं, किस तरीके के कोवर्कर्स हैं। फिलहाल आपके लिए एक फ्रेश सॉन्ग जो है वो मैं प्ले कर रही हूँ। क्या कमाल है, गाने का नाम है दिलजीत दोसांझ की आवाज़ में, ये ट्रैक है मैं वापस आऊँगा, मूवी का नाम है। अब नेटफ्लिक्स पे जो है रिसेंटली ये मूवी रिलीज़ की गई है, मतलब थिएटर्स में सबने ऑलरेडी देख ली थी, लेकिन वापस जो है वो अब नेटफ्लिक्स में जो है आउट हुई है। एंड जैसे ही ये नेटफ्लिक्स पे आई वैसे ही मैंने देखनी शुरू कर दी, देखा ही नहीं मैंने कि कितना वक्त हो रहा है। सो पता नहीं क्यों थिएटर में इस मूवी का इफेक्ट जो था वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन अपने अपने घर पर देखने में उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया, क्योंकि मैं बीच बीच में पॉज कर रही थी एंड शायद मुझे पहले से पता था कि होने क्या वाला है। बट हाँ, पर गाने जो है जब भी सुनो इस मूवी के अच्छे ही लगते हैं। सो फिलहाल ऑल फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आर के चलते जो है क्या कमाल है आ रहा है आपकी रेडियो सेट्स पर, वॉल्यूम बढ़ाओ एंजॉय करो। थोड़ी सी देर में आगे फैशन की बातचीत करेंगे और अगस्त में कौन कौन सी मूवीज जो है वो रिलीज होने वाली है इस पर भी बातचीत करेंगे डिटेल में। सो स्टे ट्यून्ड रहिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

इतना ढूंढ लिया लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि लंच में क्या खाया जाए। मतलब भूख एकदम बहुत ज्यादा लग रही होती है लेकिन समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या खाया जाए। मतलब जब घर में मम्मी पूछा करती थी कि क्या आज क्या बनाऊं, तो मम्मी से बोलते थे मम्मी कुछ भी बना लो, ये मत बनाना वो मत बनाना। एंड अभी तो ऐसा लग रहा है कि बस मम्मी कुछ भी बना के दे दो, हमें चूज करने में दिमाग ही नहीं लगाना है, बिकॉज इसमें भी ऐसा लगता है कि बहुत एनर्जी वेस्ट हो रही है। आपको ऐसा लगता है या नहीं लगता है? वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी गजल्स एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बना रहे हैं हम। अब देखिए यार, फैशन की बातचीत थोड़ी सी कर लेते हैं। अब अगर मैं फैशन में बात करूँ तो हमने बात कर ली कि यार पोल्का डॉट्स और एनिमल प्रिंट्स जो है कितने ज़्यादा इन ट्रेंड हो रहे हैं, लेकिन ड्रेसेस के साथ साथ अब ये जो प्रिंट्स हैं, ये हेड बैंड यानी जो आप हेयर बैंड बचपन में स्कूल लगा के जाया करते थे ना, उसमें काफ़ी इन हो गया है। सो अगर आपने अभी तक हेड बैंड वापस लगाना शुरू नहीं किया है तो किस बात की वेट कर रहे हो, आप किस बात का इंतज़ार कर रहे हो? हेड बैंड जो है इन ट्रेंड वापस आ चुके हैं। सो स्पेशली अगर एनिमल प्रिंट्स या पोल्का डॉट्स वाले आपके पास हेड बैंड रखे हुए हैं अलमारी में, तो निकालो उन्हें और पहनो। एंड अगर मार्केट में कहीं दिख रहे हैं तो यार लेने में बिल्कुल देरी मत करना, क्योंकि ये एक ऐसे स्टेटमेंट पीस होने वाले हैं जो कभी भी ट्रेंड से बाहर नहीं जाएंगे। एंड अभी तो देखो ट्रेंड में है, एंड जब ये कुछ दिनों बाद ऐसा होगा कि यार थोड़ा ट्रेंड कम हो जाएगा तब आप पहनोगे तो थोड़ा यूनिक लगेगा। सो इन शॉर्ट विन विन सिचुएशन है, तो जल्दी से जाओ निकालो ऐसे हेडबैंड्स को या फिर खरीद लो एंड बस स्टाइल करो और अमेजिंग एस्थेटिक पिक्चर्स लो और क्या। फिलहाल कॉकटेल टू मूवीज एज अब तलक गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय करो वॉल्यूम बढ़ा के। मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में और बात करेंगे कि अगस्त में आखिर कौन कौन सी मूवीज है जो रिलीज हो रही है।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास
1: वक्त हो गया है आपको वक्त बताने का. इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 12:11. दैट इज 12:11. स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास.
2: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
3: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर.
2: योर स्पेशल ऑफर?
3: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है. ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ.
2: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है.
3: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है.
2: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए. अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो.
4: हाय, मैं हूँ विवेकानंद ओबेरॉय. यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव जियो बिंदास.
5: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर 1 एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: अरिजीत सिंह की आवाज में जलेबी मूवी का ये ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो ऑलिव पर। मैं हूँ आपकी कसूस एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की देखो मैं कोशिश कर रही हूँ। अब मतलब कुछ दिन पहले ना किसी ने मुझे मैसेज किया था व्हाट्सएप पे कि यार कसूस आप एक ही मूवी क्यों रिकमेंड करते हो एक बार में एंड क्यों शोज जो है वो रिकमेंड नहीं करते। यार देखो मेरा ऐसा कुछ भी फाइनल नहीं है, मेरे को जो अच्छा दिखता है और ऐसा लगता है कि यार आप लोगों को ये देखना चाहिए वो मैं रिकमेंड कर देती हूँ। सो फिलहाल अगस्त में जो है हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से नए शोज और कौन कौन सी नई मूवीज जो है वो हमें देखने को मिलने वाली हैं। सो सबसे पहले तो अगर आपको रियलिटी शोज काफ़ी पसंद है एंड पिछला ट्रेटर्स आपको देख के काफ़ी मज़ा आया था, तो ट्रेटर्स सीजन 2 जो है वो जल्दी ही लाइव होने वाला है, यानी आप देख सकते हो। उसके बाद एक और सीरीज है जो लॉन्च हो चुकी है, जो मतलब नेटफ्लिक्स पे जो है आउट हो चुकी है, ऑपरेशन सफ़ेद सागर, वो आप देख सकते हो। उसके बाद 7 अगस्त को ही आर्या भट्ट का जीरो, ये जो मूवी है ये थिएटर्स में आ चुकी है, ये आप देख सकते हो। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एठा मूवी श्रद्धा कपूर की जो मोस्ट अवेटेड मूवीज में से एक है वो रिलीज हो रही है 28 अगस्त को, वो आप देख सकते हो। एंड बंटवारा मूवी जो है वो आप देख सकते हो। इसके साथ साथ टॉक्सिक मूवी जो है वो 26 अगस्त को रिलीज होने वाली है, वो आप देख सकते हो। एंड आवारा 14 अगस्त को रिलीज हो रही है। इमरान हाशमी जी का सबको इंतजार है क्योंकि अखा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी दूसरी तरफ। ये कुछ मूवीज और शोज हैं जो अभी आपको अगस्त में देखने को मिलने वाले हैं। बाकी कुछ मूवीज जो थिएटर्स में लॉन्च हुई थी वो अब OTT पर भी लॉन्च हुई हैं, सो वो भी आप जाकर देख सकते हो, एक बार चेक करो। अगर आपके पास कोई रिकमेंडेशन है जो हम बाकी लोगों से शेयर कर सकते हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हो 3311063 पर। फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द आवर आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय करो। और फिर एक और मूवी की बात करेंगे जो अभी तक रिलीज कब होगी ये तो नहीं पता है, बल्कि बस इतना अनाउंसमेंट हुआ है कि यार ये मूवी बनने वाली है एंड ये खबर सुनने के बाद आपको बहुत खुशी होगी। मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, स्टे ट्यून्ड रहिए।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।

यार देखो, मैनिफेस्टेशन से तो कुछ नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना गाना चला के ही हम इन बादलों को बरसने पे मजबूर कर सके। क्योंकि देखो, इंस्टाग्राम तो मेरा ये कह रहा था कि आज कतर में काफी सारी जगहों पे बारिश हो सकती है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। इंस्टाग्राम वालों को पता नहीं कौन खबरें दे रहा है, और अगर खबरें दे रहा है तो ये हम तक खबर क्यों पहुंच रही है, मौसम क्यों नहीं पहुंच पा रहा है। वेलकम जी, 106.3 रेडियो ऑल पर मैं हूं आपकी कसर शो आपके लिए लेकर आ गई हूं लाइफ मस्त है, जो आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बना रहे हैं हम। अब देखिए यार, सुबह ही हमने बात करी थी कि कितनी ह्यूमिडिटी बढ़ गई है एंड बादल जो है वो काले काले नजर तो आते हैं लेकिन बरसते नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से बॉलीवुड भी हो गया है, वो दिखाता तो है कि ओ माय गॉड कितनी अच्छी मूवियां हम लेकर आ रहे हैं, लेकिन जब वो आती है तो बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट जो है वो हमें फेस करना पड़ता है। बस इसीलिए जितनी भी एपिक कल्ट क्लासिक मूवीज रही हैं बॉलीवुड की, अब उन्हें वापस बनाया जा रहा है। वेलकम का जो है अलग अलग पार्ट्स बनाए गए, एंड उसके बाद धमाल का जो है अलग अलग पार्ट बनाए गए, और अब माला माल वीकली 2 आने वाली है। यस, हमारी फेवरेट कॉमेडी, जिसमें परेश रावल जी की एक्टिंग को हमने ओ माई गॉड कितना पसंद किया था। राजपाल यादव, परेश रावल, ओ माई गॉड, मुझे मालामाल वीकली आप कभी भी दिखा दो, मैं देख सकती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड अब उसका जो है पार्ट 2 आ रहा है, पार्ट 2 लाइक उसका सीक्वल बना रहे हैं। पता नहीं स्टोरी कितनी मिलती जुलती होगी या क्या कुछ होने वाला है वो नहीं पता, लेकिन बस अब खबर ये आई है कि इसकी जो प्लानिंग है वो शुरू हो चुकी है। सो अब बस इंतज़ार करते हैं और ये विश करते हैं कि इस मूवी को बॉलीवुड जो है वो ख़राब ना कर दे। फिलहाल जो है एक बहुत ही अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, वॉल्यूम बढ़ाओ, एंजॉय करो। मैं हूँ आपकी कशिश, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: हाय क्या गाना था. वेलकम टू 106.3 रेडियो ऑलिवर. मैं हूँ आपकी कशिश और मेरे साथ आप एंजॉय कर रहे थे, लाइफ मस्त है. लेकिन अब मेरे जाने का यहाँ से वक्त आ गया है तो मैं जाती हूँ. आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जाते जाते वही कहना चाहूंगी जो हर रोज कहती हूँ कि गाड़ी धीरे धीरे हौले हौले चलाना, खाना खाते रहना, पानी पीते रहना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल भी मत भूलना एंड मुझे जो है याद करते रहना. रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल पर जाकर आप रेडियो ऑलिव के सभी आरजेस को फॉलो कर सकते हो, देख सकते हो हमारा अमेजिंग कॉन्टेंट जो है उसे लाइक और शेयर भी कर सकते हो. तो देरी किस बात की है, जल्दी से जाओ रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल पर एंड हमें फॉलो कर लो. बाकी व्हाट्सएप नंबर तो आपको पता ही है, 3311063. फिलहाल जाते जाते ऑलिव फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर जो है आपकी रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय करो और आपकी कसूस के साथ कहते रहो जियो बिंदास, टाटा बाय बाय.
1: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश ये गाना फ्रेश है, फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर ये गाना.

0: इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
1: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
0: योर स्पेशल ऑफर?
1: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
0: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
1: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
2: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: हाय, मैं हूँ दिव्या दत्ता एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव जियो बिंदास।
4: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
5: ओलिव म्यूजिक मैराथन, एक घंटा नॉन स्टॉप।

0: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
1: Olive Music Marathon. एक घंटा नॉन स्टॉप बैक टू बैक गाने.

0: वाओ। आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।
1: Mornings and night.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

आप सभी का स्वागत है स्वागत है स्वागत है स्वैग के साथ स्वागत है। यह है रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो भाई कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और बांध रखिए तो कस के बांध लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम एक जर्नी को किक स्टार्ट करने वाले हैं। गाने सुनाएंगे, गुनगुनाएंगे, ढेर सारे किस्से, खबरें, कहानियां शेयर करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके साथ वक्त बिताएंगे। तो यही बोलते हुए शुरू करते हैं आज का सिलसिला, और आप भी अपने मैसेजेस का सिलसिला शुरू कर दीजिए। 3311063 पर मुझे मैसेज कीजिए, बताइए मुझे क्या हाल है, कैसा चल रहा है सब कुछ। और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: are listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह.
2: गुलराज सिंह
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3.
2: जियो बिंदास.
0: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.
3: हमने लगा और हो जा रिचार्ज. ऑलिव रिचार्ज.
4: This hour is brought to you by
5: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है हमारे हाथ में लगी है। गुड़गांव में एक वाइफ जो है अपने हस्बैंड से 20,000 रुपए लेती है, पता है क्यों? क्योंकि वो उसे होम कुक्ड खाना बना के देती है, उसका फेवरेट खाना बना के देती है। तो इस एक चीज ने जो है सोशल मीडिया में एक छोटा सा डिबेट भी स्टार्ट कर दिया है कि भाई एक्चुअली एक इंसान के टाइम और एफर्ट्स को और उनके स्किल्स को वैल्यू करना है तो दिस इज अ गुड थिंग। तो कुछ लोग कहते हैं क्या सही में ऐसा करना चाहिए, मतलब एक हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में तो ये तो ऑब्वियस सी बात है। मगर उसके साथ साथ कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये काफी बढ़िया तरीका है, क्योंकि ये पैसे घर में ही रहते हैं, जो भी पैसे ये अपने वाइफ को दे रहे हैं घर में ही रहते हैं, बाहर नहीं जाते, तो बाहर जाके जो खाने के लिए खर्च होते हैं वो यहीं पे रहेंगे। तो इट्स अ स्मार्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग ऑल्सो। बट एनीवे, आपको क्या लगता है इस बारे में जरा बताइए मुझे 3311063 पर मैसेज करके। ये बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।
3: Awesome.

मुझे लगता है इंसानों को अगर कुछ एक चीज ऐसी मिली है जो बहुत ही खूबसूरत है और जो बहुत ही बढ़िया है, वो है दोस्ती। दोस्ती कर पाना, दोस्ती निभा पाना एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो सही में बहुत फुलफिलमेंट देता है, हमें सेटिस्फैक्शन देता है। मगर जब भी कोई दिक्कत आती है हमें और दोस्त किस तरीके से रिएक्ट करते हैं वो जब हम देखते हैं तो हम अपने चॉइसेस को रीथिंक भी करते हैं। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो भाई मैंने एक वीडियो देखा जहां पे एक बंदा बैठा है, सही में उसका पुर्जा हिल चुका है, उसके चेहरे पे बैंडेज लगा हुआ है, उसका हाथ टूटा हुआ है, उस पर उसने स्लिंग बैंडेज बांधा हुआ है, हिला हुआ बंदा, इधर उधर से टूटा हुआ बंदा। उसका दोस्त उसके सामने खड़ा होकर स्पीकर में गाना चला रहा है, टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा के फिर जुड़ ना पाया। और खास बात यह है कि वो दोस्त जो टूटा हुआ है पूरा पुर्जा जिसका हिला हुआ है, वो भी इस गाने के साथ लिपसिंग कर रहा है। तो मतलब भाई दोस्ती में अपने प्यार को, अपने कंसर्न को, अपने केयर को जताने के तरीके बहुत अलग अलग होते हैं, वियर्ड होते हैं, मगर अपने होते हैं। और यही बात बताते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भर

0: इतना जज्बे के साथ भर जाता है, जुनून के साथ भर जाता है कि भाई इससे बढ़िया बंदा, इससे एंथुसियास्टिक बंदा आपको जिंदगी में कहीं नहीं मिलेगा। और ऐसी एक कहानी आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा, ये थोड़ी प्यारी सी कहानी है, तो इस कहानी को सुनाने के लिए थोड़ा वक्त मुझे चाहिए। और आप यहाँ पे काम कीजिए, गाने सुनिए, एंजॉय करिए, बैठिए यहाँ पे, मैं जरा दौड़ के जाकर आता हूँ और आपके लिए कहानी लेकर आता हूँ। स्टे ट्यून्ड, यह रेडियो ऑलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश ये गाना फ्रेश है, फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर ये गाना।

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और मैंने थोड़ी देर पहले बोला था आपसे कि भाई एक कहानी लेकर आऊंगा मैं प्यार के बारे में। तो ये कहानी है एक आर्टिस्ट के बारे में, उनका नाम पीके है। तो पीके जो है पोर्ट्रेट्स बनाने में बहुत फेमस थे, ठीक है, उनका बहुत नाम था। तो एक बार एक स्वीडिश महिला उनसे मिलने आई, उन्होंने बोला कि आप मेरा पोर्ट्रेट बना दीजिए। तो पीके ने बोला ठीक है। पीके ने पोर्ट्रेट बनाया, स्वीडिश महिला ने पोर्ट्रेट देखा, और पोर्ट्रेट देखे उन्हें पोर्ट्रेट भी पसंद आया, साथ ही साथ पीके भी पसंद आया, और इन दोनों का जो रिश्ता है वो धीरे धीरे डीपर होता गया, और ट्रेडिशनल इंडियन कस्टम्स के हिसाब से उन्होंने यहाँ पे शादी भी की। मगर कुछ टाइम बाद जो है उस महिला को वापस स्वीडन जाना पड़ा, और पीके ने बोला कि मैं आऊंगा तुम्हारे लिए, मैं जरूर आऊंगा, मेरा इंतजार करना करके। मगर बेचारा पीके इतना अफ्लुएंट नहीं था कि वो एक फ्लाइट अफोर्ड कर पाए। वो उसके पास जो कुछ था उसने सब कुछ बेच बाच के एक साइकिल खरीदी, और साइकिल से वो इंडिया से स्वीडन तक गया। बीच में बहुत सारी कंट्रीज में गया, और कम्युनिकेशन भी बहुत मुश्किल था क्योंकि ओकेजनली वो लेटर्स लिखते थे, इसके अलावा बात ज़्यादा हो नहीं पाती थी। मगर विश्वास था कि मेरा पीके आएगा और उनका पीके आया, वहां पहुंचा, और जब वो स्वीडन पहुंचा तो उनकी वाइफ उनका इंतजार कर रही थी। तो इसे में यही पता चलता है कि यार प्यार में दूरी बहुत ज्यादा नहीं होती, बस एक जुनून चाहिए होता है, एक जज्बा चाहिए होता है, और एक वादा निभाने का लगन चाहिए होता है। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
1: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
0: योर स्पेशल ऑफर?
1: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
0: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
1: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
2: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: हमने लगा और हो जा रिचार्ज। ओलिव रिचार्ज।
4: ओलिव रिचार्ज। रेडियो ओलिव 106.3 एफएम पर। जियो बिंदास।
3: ओलिव रिचार्ज।
5: This hour is brought to you by
6: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.

एप्पल यूजर्स के लिए खास खबर है मगर एक कैच के साथ। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और भाई एप्पल ने नया एक सिस्टम नहीं बोल सकता मैं, बट एक नई खबर जो है हमारे हाथ में लगी है वो यही है कि कुछ सेलेक्टेड एप्पल प्रोडक्ट्स और एंड्रॉयड प्रोडक्ट्स में जो है 30% तक आपको मुनाफा मिल सकता है अगर आप उन्हें ट्रेड ऑफ करते हैं। तो यूजुअली जब एप्पल के प्रोडक्ट्स आप वापस लेके एक्सचेंज करके लेते थे तो उनका वैल्यू कम था, बट अभी 30% तक इंक्रीज जो है हमें सुनने को मिला है। मगर कैच ये है कि ये 30% इंक्रीज जो है US मार्केट में अभी तक अवेलेबल हुआ है, बाकी मार्केट्स के बारे में कोई कमेंट नहीं किया गया है। बट एनी वे भाई देखते हैं क्या होता है। मैं तो यही चाहूँगा कि आ जाए क्योंकि बेचना अपना फ़ोन भी मुझे ज़रा और यही बात बोलते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

भाई थोड़ी देर पहले हमने आईफोन की बात करी, मगर यहाँ पे मैं ऐसे फोन की बात करूंगा जो सही में आपके होश उड़ा देगा। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। आपको याद होगा मोटोरोला रेजर जो फ्लिप फोन आता था बहुत पहले, ठीक है, अभी उसका नया मॉडल भी आ गया टच स्क्रीन के साथ, बट वो एक स्मार्टफोन है। उसी फोन के डिजाइनर ने एक नई कंपनी स्टार्ट की है और उन्होंने निकाला है द लाइट फोन। इस लाइट फोन की अगर हम स्पेशलिटीज की बात करें तो भाई बेस मॉडल फोन जैसा है, फ्लिप फोन है, इसमें आपको इंटरनेट ये सब चीजें नहीं मिलेंगी, मगर फंक्शनैलिटीज सारी मिलेगी। हेडफोन जैक मिलेगा जिसमें आप गाने सुन सकते हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हैं, साथ ही साथ एक बहुत ही मिनिमल डिजाइन वाला एक स्क्रीन होगा और जो पूरे सनलाइट में भी आप देख सकते हैं। और काफ़ी हल्का फ़ोन है ये, बहुत लाइट फ़ोन है, इसलिए इसका नाम लाइट फ़ोन रखा गया है और काफ़ी कूल कलर्स में भी अवेलेबल है। और इसकी प्री बुकिंग है, ये अप्रैल 2027 में जाके लोगों को मिलेगा, तो आप प्री बुक कर सकते हैं इस फ़ोन को। अगर आपको सोशल मीडिया, डिजिटल डिटॉक्स इन सब में थोड़ा और ये करना है, सोशल मीडिया से दूर रहना है, तो आई थिंक दिस फ़ोन माइट बी अ गुड चॉइस। और ये बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे काफी इंटरेस्टिंग खबर जो है मेरे हाथ में लगी है। उत्तराखंड में कुछ बच्चों ने मिलके जो है एक प्रोटोटाइप बनाया है फ्लाइंग कार का। उसका फोटो मैंने देखा भाई, देख के मजा आ गया, काफी फ्यूचरिस्टिक डिजाइन। और मैं यही सोच रहा था कि यार अगर ये चीज जो है एक कमर्शियल लेवल पे बनना शुरू हो जाएगी तो रोड से ट्रैफिक तो हट जाएगा, मगर शायद आसमान को लोग उतना एंजॉय नहीं कर पाएंगे जितना अभी आसमान की फोटोग्राफी होती है, बादलों की फोटोग्राफी होती है। अगर फ्लाइंग कार्स आ गए तो शायद ये चीज नहीं कर पाएंगे। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
2: Hi, this is Kailash Kher, and you are listening to Qatar's first Hindi radio station, Radio Olive.

0: जब भी मैं बाल कटाने जाता हूँ मैं दो चीजों के लिए हमेशा एक्साइटेड रहता हूँ, एक हेड मसाज और दूसरा उनका प्लेलिस्ट। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम, मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव। तो भाई मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि मैं जहां भी बाल कटाने गया हूँ, ठीक है, अब चाहे मैं केरला में बाल कटाने जाऊं या फिर मैं कतर में बाल कटाने आऊं, मेरे को हमेशा वही लोग मिले जो हिंदी बोलते हैं और जो 90s के बैंगर गाने अपने प्लेलिस्ट में चलाते हैं और अपना काम करते हैं। भाई मजा आ जाता है, मतलब माहौल सेट हो जाता है। अब एक बंदे ने इस चीज को एक लेवल ऊपर कर दिया, उसने एक वेबसाइट क्रिएट किया जिसमें सारे ऐसे बार्बर शॉप के बैंगर ट्रैक्स हैं, जो 90s के गाने हैं बॉलीवुड के वो चलते हैं। और मैं भी सोचा कि यार ये तो अलग लेवल पेश कोगे इस चीज का, मगर एनीवे देख के मुझे भी काफी अच्छा लगा। और यही बात बोलते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: यार मुझे 10 GB फ्री मिला मेरे हाला रिचार्ज के साथ।
2: क्या कैसे?
1: बस रिचार्ज करो और तुम्हें फ्री डेटा या मिनट्स मिलते हैं। कल मुझे 50 फ्री मिनट्स मिले।
2: रोज मिलता है क्या?
1: हाँ रोज मिलता है।
2: मैं भी अपना हाला नंबर रिचार्ज कर रहा हूँ।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
3: लगा और हो जा रिचार्ज।
0: Olive Recharge Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas
3: Olive Recharge.
4: This hour is brought to you by
5: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.

आप सभी का फिर से एक बार इस्तकबाल है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे एक बात बताना चाहूंगा मैं आपको, वो यही है कि अगर आपने अभी तक रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो जाने क्या किया, सीधा जाइए अभी के अभी इंस्टाग्राम खोलिए, रेडियो ऑलिव डॉट क्यू ए सर्च कीजिए और फॉलो बटन दिख रहा है तो उसे प्रेस कीजिए बस एक ही बार, ठीक है। और आप हमारे कंटेंट को चेकआउट कर सकते हैं, पोस्ट देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक बात बता दूं, जैसे हम ऑन एयर में गेम्स रखते हैं वैसे ही ऑनलाइन भी हमारे डिजिटल मीडिया में भी हम डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेस्ट लेकर आते हैं ताकि आपको प्राइज मिलने के चांसेस जो हैं बढ़ जाएं, मिल जाएं। और यही बात बताते हुए हम आगे बढ़ते हैं और याद दिलाते हैं कि अभी के अभी इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो करना, सोशल मीडिया पोस्ट चेकआउट करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, हमें सुनते हुए स्टोरी डालोगे तो हम उसे रीशेयर भी करेंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हमारे साथ जुड़ना। और यही कहते हुए कहना जियो बिंदास।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.
1: गाय के साथ CNG हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर विजिट कारमेल ग्रुप नाउ
2: लगा और हो जा रिचार्ज ऑलिव रिचार्ज
0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
2: ऑलिव रिचार्ज
3: This hour is brought to you by
4: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.

0: तो भाई धीरे धीरे टाटा बाबाई गुड बाई करके निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे 5 बजने वाले हैं। पार्टी कंटिन्यू करने के लिए सिमरन पहुंचने वाली है, तो खुली बाहों से सिमरन का स्वागत करना, जितना प्यार मुझे दिया है उतना और उससे ज्यादा प्यार सिमरन को देना। जाते जाते जाते आपसे यही दरख्वास्त है कि आप अपना ख्याल रखिए, अपने खास लोगों का ख्याल रखिए और हमें जरा दुआओं में याद रखिए। फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक के लिए हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश है ये गाना, फ्रेश है, फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर ये गाना।
2: Here we go।

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो बिंदा।

बिल्कुल अपन के जैसे ही जीना, माहौल जो है वो सेट है और आपका इंतजार था। कोई अखियां उड़ीक रही थी। क्विकली आप लोगों के मैसेजेस का मैं इंतजार कर रही हूँ 3311063 पर। कैसा रहा आपका आज का दिन? बस आ रही हो यार, थोड़ी देर में एंजॉय करो अगला गाना।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम।
1: हाय रेडियो ओलिव 106.3 लिसनर्स, दिस इज रणवीर सिंह, स्टे ट्यून्ड।
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ।
4: Zabardast evening, make you drive golden with.
5: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just feel

0: राजा। जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ, डॉक्टर्स का ये कहना है कि भाई ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम ले रहे हैं कि भाई सारा दिन फोन में टैब में ही घुसे रहते हैं बच्चे, गेम्स में घुसे रहते हैं, तो ऐसे टाइम पे उनकी स्लीप और हेल्थ के ऊपर जो है वो बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। तो बच्चों को कोशिश करो कि उनको थोड़ी यू नो फिजिकल एक्टिविटीज करवाओ, क्रिएटिव फेस टू फेस इंटरेक्शन जो है वो होना चाहिए ताकि उनका स्क्रीन टाइम जो है वो कम हो सके। वो मुझे लगता है कि बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम सभी यही करते रहते हैं यार। लेकिन आप लोग जो है कितनी मेरी छोटी छोटी चीजें नोटिस करते हो यार।
1: सिमरन जी,
0: हेलो जी, वेरी गुड इवनिंग।
1: मुझे एक्चुअली एक बात याद आ रही थी आपको सोच के, तो आप पहले बोलती थी ना इस तरह से कि कैसा भी होता है बेबी, तो बहुत प्यार से आप बोलती है तो जो है ना अच्छा लगता है।
0: थैंक
1: यू। बाकी दिन सही गुजरा।
0: ओके, बहुत बढ़िया बेबी। ये तो मेरी आदत है बोलने की, बट यस ऐसा भी होता है बेबी। मुझे याद नहीं है ये मैंने ऐसे कभी बोला होगा, बट आपने नोटिस किया, थैंक यू सो मच है जी। फुरकते गम मिटा जा, अगर आप उर्दू समझते हैं तो मुझे बताइए फुरकते गम क्या होता है यार। मैसेजेस करते रहिए क्योंकि चार घंटे अपने ही हैं 3311063 पर।
2: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है, जबरदस्त है।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: यार मुझे 10 GB फ्री मिला मेरे हाला रिचार्ज के साथ।
2: क्या कैसे?
1: बस रिचार्ज करो और तुम्हें फ्री डेटा या मिनट्स मिलते हैं। कल मुझे 50 फ्री मिनट्स मिले।
2: रोज मिलता है क्या?
1: हाँ रोज मिलता है।
2: मैं भी अपना हाला नंबर रिचार्ज कर रहा हूँ।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ।
6: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
7: लुलु हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: का साथ निभाने के लिए साथ इस तरह से मिल रहा है तो बिल्कुल है यार।
1: Hi Simran di, I am missing you. Oh. I love you too. I love you too much.
0: I love you so kilo darling. यार इतना सारा प्यार जब आप लोगों का मिलता है ना, बड़ा अच्छा लगता है यार। इसी तरह से आप लोग मुझे वॉइस नोट्स भेजते रहा करो और मुझे मजा आता रहता है और समझ लगता रहता है कि कौन कौन जो है वो मुझे सुन रहा है और क्या क्या आपकी थॉट्स हैं। और थॉट्स इसके बारे में इंटरनेट में बहुत सारे लोगों के हैं। रिसेंटली एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक वाइफ जो है अपने हस्बैंड को जो है कैफे स्टाइल मील्स बना के दे रही है और जितनी बार भी उनको कैफे स्टाइल मील बना के दे रही है उसका हस्बैंड उसको 1000 रुपीज देता है। कहती उसका ये कहना था कि भाई हम लोग दोनों जो है काम करने वाले हैं, है ना, हम बाहर जाते हैं और बाहर खाना हमारा ज्यादा होता है तो उतने ही उससे ज्यादा पैसे जो है वो लग जाते हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, कह रही कि भाई तू, मैं तेरे को बना के दूंगी ऐसे खाने एकदम कैफे स्टाइल और जितनी बार वो बना के देगी वैसे ही, तो उसका हस्बैंड जो है वो उसको 1000 रुपीज जो है वो देगा। सो या अभी क्या है, इस वीडियो को 1.2 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। लोग जो हैं वो इंटरनेट पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो है वो कर रहे हैं। लेकिन उसने ये भी बोला है, जो क्रिएटर प्रिया है जिसने ये वीडियो डाला है, उसने ये भी बोला कि भाई ये जो पैसे मैं जमा कर रही हूँ ये आगे जाके उनके फ्यूचर के लिए जो है वो काम आने वाले हैं, जो भी उनका सोचेंगे, है ना। बट मेरे को ये आइडिया काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहा, तो सेविंग भी हो जाएगी और आगे दोनों ने मिलके अपना जो भी ड्रीम सोच रहे हैं उन पैसों से वो भी पूरा हो जाएगा यार। इसके बारे में क्या कहना है बता सकते हैं 3311।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
2: साथ। Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

माय गॉड, सो मच दर्द है गाने में। थोड़ा गाना सुन के आप वापस जरूर लौट आइएगा, कहीं और मत चले जाइएगा। और ये मैसेज कहीं और चला गया, 2016 की बात है। क्या हुआ कि एक ग्रैंड मदर ने ग्रुप बना दिया जहां पर वो नई नई बेचारी दादी बनी थी, तो उसने एक जगह पे मैसेज भेज दिया जहां पे वो नंबर जो था वो गलत था। अब एक रॉन्ग नंबर पे मैसेज जाता है कि भाई बच्चा हुआ है और ये दादी बन गई है, दिस एंड दैट, ग्रैंडसन आ गया उनका, है ना। वो बंदा अब इनको जानता नहीं है, लेकिन स्टिल वो बंदा जो था वो हॉस्पिटल पहुंचा डायपर्स वाइप्स एंड बेबी बॉटल्स लेके। वो इनको कंग्रेट्स करने पहुंचा, और उसके बाद जो इनकी इन्होंने ये चीज की, उसके बाद उसी फैमिली के साथ उनकी दोस्ती जो है वो बन गई। इसी तरह से दोस्तियां जो है वो एक्सीडेंटली आपकी हो जाती है, और आप एक टाइम पे जाके ऐसे सोचते हो जब आपकी दोस्ती पुरानी हो जाती है, आप सोचते यार क्या ही मतलब, कैसे मिल गए थे हम ना, और कैसे ही हम दोस्त बन गए थे ना। तो इस तरीके से इनकी भी फैमिली फ्रेंडशिप हो गई। 5:53, 30 सेकंड स्टूडियो की घड़ी पहुंच गए। सिमरन कौर आपके साथ है, कितना जी ठीक हो।

में से किसी का आज हैप्पी वाला बर्थडे है तो ये गाना आपको डेडिकेट करते हैं, लेकिन आपका नहीं आज। अगर आपके दोस्त का बर्थडे है तो उसको ही डेडिकेट कर देते हैं, लेकिन बता देना कि किसका बर्थडे है, तो मैं भी बर्थडे बोल दूंगी ना हैप्पी वाला।

ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੋਹਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। बाहर की ह्यूमिडिटी, बाहर का मौसम देखा है यार। मौसम छह तो हो गई है, 9 बजे तक जो ह्यूमिडिटी है वो 68% तक पहुंच जाएगी। नाइट टू मिड नाइट जो है वो 11 से 3 बजे के बीच में 70 से 85% ह्यूमिडिटी जो है वो हो जाएगी। भाई ये नहीं सोती है रात भर भाई साहब। कोई बात नहीं, अगस्त निकल जाने दो, उसके बाद थोड़ा ठीक हो जाएगा माहौल। चको फिर अगला गाना तो डेली आ गया, माशू का।

0: इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
1: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
0: योर स्पेशल ऑफर?
1: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
0: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
1: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
2: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण।
4: दीपिका पादुकोण,
3: रेडियो ओलिव 106.3।
5: I'm in number one, रेडियो ओलिव।
6: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
7: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे,
8: आरजे सिमरन के साथ।
9: Zabardast evening, make you drive golden with.
10: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
11: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. गदर की नंबर वन आरजे सिमरन के
3: साथ. Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
4: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

0: हाँ जी निगम्मा गिया बेबी बस करे
1: आपने जो क्वेश्चन पूछा आज किसका किसका बर्थडे थोड़ा बता दो करके तो मैं बताना चाहूंगा कि आज मेरा दोस्त का बर्थडे है और उसका नाम है विनायक विनायक शेट्टी या उसका नाम भी सेम ही है बट उसे हम लोग प्यार से विकी कहते हैं विकी प्लीज तो उसका भी आज बर्थडे है एंड आई वांट दैट कि हमारे साथ रेडियो ओलिव भी उसे ग्रीट करे विश करे और उसका दिन आज स्पेशल हो जाए
0: बिल्कुल
1: ये दोस्तों की तरफ से हमारी चाहते हैं
0: क्या बात है यार
1: और आपके वॉइस के थ्रू उसे अगर आप विश कर दो तो और भी अच्छा है
0: जी
1: आई फील वेरी नो फ्रेश एंड गुड समथिंग स्पेशल
0: क्या बात है यार
1: थैंक यू रेडियो ओलिव जियो बिंदास
0: विनायक जी आपके दोस्त विनायक जिसको आप प्यार से बोलते हो विकी प्लीज आप मुझे सुन रहे हो क्या हैप्पी वाला बर्थडे है यार बधाइयां मिठाइयां दे बहुत सारे पटाखे खुश रहो यार अगर और भी किसी का हैप्पी वाला बर्थडे तो बताओ मैं विश कर दूंगी यार माइंड में बहुत प्यारा गाना है थोड़ी देर में आएगा लेकिन उससे पहले तो गाल गाल में धमाल हो जाएगा

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Serve with pride. Danat Al Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद.
5: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

इसीलिए अपन आंख नहीं लड़ाते क्योंकि नींद बड़ी प्यारी है यार। मुझे देख के सुन के ऐसे हो रहा है कि मैं नहीं करूंगी, लेकिन मैंने ये लोगों को करते हुए देखा है। पूरा एक बटर का ब्लॉक लेंगे, पूरा बटर का ब्लॉक होगा, उसको डिप करेंगे न्यूटेला में और लोग लिटरली उसको खा रहे और कह रहे हैं वाओ कैसे वाओ है, कैसे खा रहे हो यार। मतलब एक तो इतना फैट और वो पूरा बटर का जो ब्लॉक है वो उसमें चक मार के आप पूरा वो ब्लॉक खा रहे हो और न्यूटेला में ओ माय गॉड मीठा और फैट। ओ माय, मैं सोचना भी चाहती कि इसमें कितनी कैलोरीज और कितना वो आपको खराब कर सकता है। लेकिन मैं एक चीज बोलूंगी कि यार वायरल तो कभी भी कुछ भी हो जाता है, बट मेक श्योर कि आप अपनी हेल्थ को इन सारी चीजों के लिए दांव पे ना लगाओ यार, क्योंकि भाई साहब लगती है वाट अपनी हेल्थ की।

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: गाय के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर विजिट कारमेल ग्रुप नाउ.

0: विशाल मिश्रा. वाओ. हां जी
1: अल्खोर.
0: और आज जिस फिल्म के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है ये

दुश्मन फिल्म के बारे में बता रही हूँ जिसमें काजोल का डबल रोल था, और डबल रोल था ना यार, मतलब क्योंकि ये फिल्म मैंने बिट्स एंड पीसेस में देखी हुई है, बट इस फिल्म के बारे में मेरे को कुछ चीजें पता है कि ये जो फिल्म थी ना वो रीमेक थी 1996 में एक हॉलीवुड फिल्म आई थी आई फॉर एन आई, सो यार इसी फिल्म का ये रीमेक थी, और पहले ये रोल जो था वो आमिर खान ने बोला कि वो करेंगे, पर जो ब्लाइंड मैन वो बनने वाले हैं उसके लिए उनको पूरी थोड़ी यू नो प्रैक्टिस करने की जरूरत है, बट आमिर खान को बाद में ये बोला गया कि आपकी जो है वो आपको फुल रोल नहीं दे रहे हैं, आपको एक शॉर्ट रोल जो है वो देने वाले, तो उसके बाद फिर आमिर खान ने बोला कि नहीं भाई, मतलब मैं ये रोल जो है वो नहीं करने वाला हूँ। सो या उसके बाद इस फिल्म से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी बातें जो कि मैं आपको वापस लौट के बताने वाली हूँ। रेडियो ऑलिव गोर के जरिए जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. गाय के साथ CNG हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर विजिट कारमेल ग्रुप नाउ.
1: हेलो, मैं हूँ नीना गुप्ता.
2: नीना गुप्ता,
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3.
0: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क. रेडियो ओलिव नंबर वन.
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ.
5: Zabardast evening make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop. Just

0: दुश्मन फिल्म से आप ये गाना सुन रहे हैं, चाहे काजोल हो, संजय दत्त हो या आशुतोष राणा हो, तीनों के रोल की बराबर तारीफ हुई थी। काफी अच्छी फिल्म थी। और संजय दत्त का पहली बार थी कि वो एक ब्लाइंड मैन का जो थे वो रोल कर रहे थे। एंड काजोल की बात करें, ड्यूरिंग यू नो शूटिंग, सो काजोल जो थी वो इन बिटवीन बिजी हो गई थी, लेकिन उनकी जो डबिंग थी आवाज़ की वो मोना घोष ने की थी। इस चीज़ का एहसास हमें मतलब फिल्म देखते हुए जो है वो बिल्कुल नहीं होता है। बट क्या हुआ था कि पूजा भट्ट जो प्रोड्यूसर थी इस फिल्म की, एंड यू नो मुकेश भट्ट, उनको लगा था कि यार ये आशुतोष राणा को जो हम रोल देने वाले हैं विलन का, उनका फेस बड़ा सॉफ्ट है यार, ये रोल वो कर नहीं पाएंगे। लेकिन बाद में जब गुलाम फिल्म की ट्रायल्स हो रही थी, उन्होंने नोटिस किया कि भाई ये बंदे में दम है, और आशुतोष राणा का जो रोल रहा और जिस तरीके से इस फिल्म में उनकी तारीफ हुई है तो वो तो अनबिलीवेबल था। और इस रोल के लिए जो कि काजोल का रोल है, वो पहले श्रीदेवी, मनीषा कोराला, इन सबको ऑफर किया गया था, लेकिन फाइनली काजोल ने इस फिल्म के लिए साइन किया। और यस, और ये फिल्म जो है वो बहुत ही कमाल की फिल्म है यार, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने बिट्स एंड पीसेस में देखी है पर बहुत लोगों से तारीफ सुनी है यार। रेडियो ऑलिव कर के दरिए जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है,
2: अभी बजा आएगा ना भिड़ो, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा।

0: Listening to Radio Olive 106.3 FM. इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

0: मॉर्निंग की तरह की हलचल। सत श्री अकाल, सिमरन कौर है आपके साथ। आपको ना एक ऑकवर्ड सिचुएशन के बारे में बताती हूँ।
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ।
0: सिचुएशन आप सब ने जो है वो फेस की होगी कि जो लोग झूठ जो हैं वो सफाई से बोलते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि वो जो इंसान है वो आपके दिल के बहुत करीब है, लेकिन उनकी आदत है कि वो हर छोटी बात पे जो है वो झूठ बोल देते हैं, और कभी कभी आपको उनका झूठ जो है वो समझ भी लगता है, पता भी लगता है ना, बट आप सामने वाले के लिए एक्शन जो है वो नहीं लेते हैं। सो ऐसे टाइम पे समझ नहीं लगता कि यार हमको जो लग रहा है हमको बोलना चाहिए, और कभी कभी ये भी होता है कि जो वो हो सकता है कि वो इंसान सच बोल रहा हो उस टाइम पे, जिसकी आदत है झूठ बोलने की, क्योंकि उसके मुंह से हर चीज झूठी लगती है। फिर जो अपने जैसे लोग होते हैं उनको ये लगता है कि नहीं यार ऐसा ना हो कि अगर मैंने बोला तो हो सकता है ये बात वो सही बोल रहा हो और मेरे को गलत लग रहा हो। तो ऐसे सिचुएशन में जब आप फंसते हैं ना तो बहुत ज्यादा, और आपका माइंड जो है ना वो इस तरह से रहता है कि भाई अगर नहीं बोला तो मेरे अंदर ही ये दाल जो है वो उबलती रहेगी और मैं चैन से बैठ ना पाऊंगा ना मैं बैठ पाऊंगी, है ना। तो ऐसा सीन हो जाता है। सो जो लोगों की आदत है झूठ बोलने की, आप प्लीज झूठ मत बोलिए यार, सामने वाले नहीं समझ पाते कि उनको क्या करना है यार।

0: 9 बजे तक आपके साथ वापस लौट के नेम गेम खेलने वाली हूँ। जितने भी लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम मैं रेडियो पे बोलूं, तो आप बस अपना नाम टाइप करके रखिए। मैं वापस लौट के जैसे ही आपको बोलूं, आप मुझे अपना नाम लिख के व्हाट्सएप कर दीजिएगा। लीजिए फिर अगला गाना, बैंड बाजा भारत। आपकी लाइफ में नहीं है तो गाना तो है।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Serve with pride. Danatal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Al Khor.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ
4: Zabardast evening. Make you drive golden with.
5: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores. Where the world comes to shop.

ब्यूटीफुल। आपको ही बताना पड़ेगा और आपको मुझे लिखिए अपना नाम, व्हाट्सएप करना है। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 3311063। एक बार वापस से 3311063। इस नंबर पे सिर्फ और सिर्फ आप अपना नाम लिख के भेज दीजिए। अगला गाना शुरू होने से पहले जितने भी नाम दिखेंगे वो सारे नाम मैं बोलती हूँ। फारूक, फूल कुमारी, अक्रम, फिलिप, यूवी, साजिद, मोहम्मद यूसुफ, यम थापा, मोहम्मद अनवर, अक्रम, अमीला, फारा चांद, मोहम्मद वसीफ, और एक मिनट, बहुत सारे नाम लिख देते हो यार। एंड बुशरा जी, थैंक यू सो मच। बुशरा, तरन्नुम, इरफान खान एंड लतीफुल्ला जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। करीना जी, थैंक यू सो मच। फातिमा यूसुफ जी, आसमा जी, थैंक यू सो मच। साजिद खान जी, थैंक यू सो मच। आप फारूक जी, थैंक यू सो मच। खिजर हयात जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। 3311063 पे सिर्फ और सिर्फ आपको अपना नाम जो है दोस्त लिख के भेजना है। इकबाल जी, थैंक यू सो मच। मनीष जी, थैंक यू सो मच। मुकेश जी, थैंक यू सो मच। पाली जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। कैसर जी, थैंक यू सो मच। शोएब जी, थैंक यू सो मच। इमरान जी, थैंक यू सो मच।

शशिकांत जी थैंक यू सो मच, नरेंद्र जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। क्विकली नाम लिखिए, अगला गाना शुरू हो रहा है। दोस्त फिर मत बोलना कि मेरा नाम जो है वो नहीं बोला है। साहिब जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। हाजरा जी थैंक यू सो मच। इमरान जी थैंक यू सो मच। मोहम्मद जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। लतीफ जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। संजू जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। एंड दैट्स इट फॉर नाउ। जिन जिन लोगों के मैंने नाम ले लिया बेटा, अब आप थैंक यू लिखो और बना लो अपना फेवरेट वाला इमोजी। अगले घंटे खेलते हैं एक चुटकी सॉन्ग, तैयार हो जाओ।

0: Namaskar, my name is Ashish Vidyarthi and you are listening to Qatar's topmost Hindi FM channel 106.3 Radio Olive Jio Bindas.
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
2: आरजे सिमरन के साथ।
3: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
4: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

0: नंबर गाने आप लोगों के लिए चला रही हूँ. क्या चाहिए यार लाइफ में. 8:18 और 40 सेकंड हो चुके हैं और अब हम खेलेंगे
1: रेडियो ऑलिव पर.
0: बहुत बढ़िया. यहाँ पे होती है आपकी बॉलीवुड की नॉलेज चेक. तो फिर तैयार है. इसको सुना बताओ ये कौन सा गाना. नहीं, जो ये इतने स्मार्ट बन रहे हो लिख रहे हो, लिखो नहीं, वॉइस नोट रिकॉर्ड करना है आपने. हे सिमरन अपना नाम बताओ और गाना गा के बताना तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन बोल के बताना तो भी चलेगा, लेकिन वॉइस नोट भेजना है. और भेज दो 3311063 पर. एक बार वापिस से सुना रही हूँ. इंतजार कर रही हूँ. प्लीज यार लिखो नहीं यार, आप लोगों के लिखने वाले मैसेजेस आते हैं मेरा मूड खराब हो जाता है यार.
2: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
3: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है.

0: यार इतना प्यारा गाना है यार, मैं क्या जी सुनियो के दादी की हाल चाल, सत श्री अकाल, सिमरन कौर आपके साथ, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू आप सबके मैसेजेस के लिए जो कि आप यू नो भेजते हैं। एंड हम खेल रहे हैं एक गेम जिसमें आपकी बॉलीवुड की नॉलेज चेक होती है यार।
1: रेडियो ओलिव पर
2: बहुत बढ़िया
0: और इसमें मैंने आपको ये सुनाया था, और आप लोगों के जवाब,
3: हाय सिमरन, दिस इज मून,
0: हाय मून,
3: द सॉन्ग इज कैसे मुझे तुम मिल गए,
0: हाय हाय, थैंक यू सो मच मून।
4: हे सिमरन, मेरा नाम फारूक है और ये सॉन्ग कैसे मुझे तुम मिल गई, किस्मत पे आई ना यकीन, गजनी फिल्म का सॉन्ग है एंड यू बिंदास,
0: एकदम करेक्ट बोले यार सर, थैंक यू सो मच यार। बाकी लोग जिन्होंने मुझे लिख के भेजा, मैं उनसे यही बोलूंगी कि दोस्त प्लीज वॉइस नोट भेज दिया करो।

0: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
2: आरजे सिमरन के साथ
3: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद। Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
4: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

किया। बड़ी बड़ी बातें होंगी, बाकी बड़ी बड़ी बातें मैं कल शाम को आगे करूंगी। 5 बजे जबरदस्त इवनिंग्स में होती है आपसे मुलाकात। टिल देन खाते में देर ऐश कर दे, चेहरे पे वड्डे वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना। बी नाइस टू एवरीवन यार। गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू सो किलो।

कभी एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की है? कतर में जैसे ही सनसेट होता है ना, सिटी का मूड एकदम चेंज हो जाता है। दिन में जो रोड्स, मॉल्स, कैफेज और स्ट्रीट्स रिलेटिवली बहुत शांत लगते हैं, वही जगह पर रात को सडनली बहुत ज़्यादा शोर शराबा और मस्त आवाज़ें आने लगती हैं। और अगस्त की हीट में तो ये इंटरेस्टिंग हो जाता है। और वैसे आज का मौसम थोड़ा सा अलग था, लोग अपने प्लान्स को डे टाइम से शिफ्ट करके इवनिंग और लेट नाइट्स में आ जाते हैं। कैफे और कॉफीज जो है वो आफ्टर 9, डिनर जो है वो रात के 10 बजे के बाद, और फ्रेंड्स से मिलना और फिर वो क्लासिक लाइन, बस एक कॉफ़ी और कड़क चाय या फिर घर। सो कभी सोचा है कि हम मेमोरीज भी टाइम के साथ अटैच कर देते हैं? किसी के लिए चाइल्डहुड मीन्स समर आफ्टरनून्स, किसी के लिए कतर मीन्स लेट नाइट ड्राइव्स और सिटी लाइट्स। तो आज जो वीकडे है स्टार्ट हो चुका है, संडे था, बहुत सारी मीटिंग्स, बहुत बड़ा हैक्टिक डे, इतने सारे टारगेट्स, और फिर मूड बिल्कुल वैसा था कि यार वीकेंड ख़त्म हो गया। सो कतर में आपका फेवरेट टाइम क्या है, सुबह का पीसफुल सिटी या फिर रात के जो लाइवली दोहा है वो? सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान। Stay tuned, Jio Bindaas.

0: ये है मिडनाइट लाउंज
1: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM

गुड इवनिंग कतर, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 एफएम. व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक इट वाज. आज की कहानी सुन के शायद आप ना एटीएम से पैसे निकालते वक्त एक बार चॉकलेट जरूर याद करोगे. सो आज मैं आपको एक कहानी बताती हूँ. एटीएम के अर्ली इन्वेंटर थे जॉन शेफर्ड बैरॉन. उनके दिमाग में एक आइडिया आया, लेकिन इंस्पिरेशन बैंक से नहीं था, चॉकलेट वेंडिंग मशीन से था. उन्होंने सोचा अगर मशीन चॉकलेट दे सकती है तो एक मशीन कैश क्यों नहीं दे सकती. आइडिया सिंपल था, लेकिन उस सिंपल थॉट ने बैंकिंग को कम्प्लीटली चेंज कर दिया. आज हम मिडनाइट में भी कैश निकाल सकते हैं बिना बैंक के ओपन होने के वेट किए. और इस स्टोरी की सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या लगती है? इनोवेशन हमेशा किसी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम से नहीं आती, कभी कभी बस एक ऑर्डिनरी चीज से निकलकर सवाल आता है और फिर लगता है कि यार ये तो हो सकता है, अगर ये पॉसिबल है तो कुछ और क्यों नहीं. सो आपके दिमाग में कभी कोई ऐसा आइडिया है जो उस वक्त सिली लगा हो लेकिन बाद में बहुत यूजफुल निकला हो? 3311063 इज माई नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड. जियो. बिंदास.

0: बहुत काम
1: मेरी भी तो सुनो।
0: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है।
1: वाओ।
0: जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो
1: जाए।
0: कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर मंडी।
1: नॉट लिसनिंग।
0: सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती।
1: ओके, आई एम नॉट विद हर।
0: इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
2: ओके, दैट्स इट। यू आर लिसनिंग टू Radio Olive 106.3 FM Geo Bindas
3: Yeah Midnight Love
4: Yeah Midnight Love

वेरी गुड इवनिंग. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम. दिस इज मी मुस्कान विद यू. शो का नाम है यस ऑफ कोर्स मिडनाइट लाउंज. बॉलीवुड में कुछ गाने ऐसे होते हैं जो रिलीज होते ही हिट नहीं होते. कभी प्रोड्यूसर को डाउट होता है, कभी म्यूजिक लेबल को, और कभी किसी को लगता है कि ये गाना ना चलेगा नहीं. लेकिन फिर ऑडियंस डिसाइड करती है, कभी इंस्टाग्राम रील्स में हिट करके तो कभी यू नो डांस करके. और यही तो सिनेमा का मैजिक है यार. आप एक सॉन्ग को स्टूडियो में रिकॉर्ड करते हो, कंपोजर को लगता है कि मास्टरपीस है, प्रोड्यूसर जो है वो हमेशा कंफ्यूज रहता है, और फिर एक दिन वो गाना रेडियो पर चलता है और सडनली लोग उसे अपना बना ही लेते हैं. सो क्योंकि म्यूजिक का मैथमेटिक्स ना ऐसे कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है. एक गाना टेक्निकली परफेक्ट हो सकता है, लेकिन अगर इमोशन नहीं है तो दिल तक नहीं जाता. और सिंपल बात यह है कि कभी सिंपल सी मेलेडी कभी पूरी जनरेशन की मेमोरी बन जाती है. सो आपके साथ भी कोई ऐसा गाना है जो पहली बार सुना हो तो बहुत ही नॉर्मल लगा हो, लेकिन बाद में वो ना कहीं इंस्टाग्राम रील में या कहीं किसी इमोशन के साथ किसी जगह पर देखा और सुना और फिर वो आपका फेवरेट बन गया. 3311063 इज माई नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

वेरी गुड इवनिंग, यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम, दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज। एक बहुत ही सिंपल सा और ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछती हूँ, आपके बेस्ट आइडियाज ना आपको कब आते हैं? किसी मीटिंग में बैठकर जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं पर आपका दिमाग कहीं और है, या कहीं किसी डेस्क पर, या फिर शार में? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम किसी प्रॉब्लम को फोर्सफुली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ना, तो ब्रेन एक ही

तुरंत लिख लेना आपके ब्रेन में सबसे ज़्यादा क्रिएटिव यू नो आइडियाज़ जो हैं वो कब आते हैं, ड्राइविंग टाइम पर, वॉकिंग टाइम पर, या फिर किसी लेट नाइट कॉफ़ी पर। सुन रहे हैं आप रेडियो अलर्ट, नंबर है 3311063। मैं हूँ मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: ये है मिडनाइट लाउंज।

Good evening, welcome back. You are listening Radio Olive 106.3 FM. This is me, Muskan, with you. Our show ka naam hai, yes, of course, Midnight Lunch. Ek artist tha, uske baad usne ek painting banayi. That was Mona Lisa, Leonardo da Vinci, theek hai? Hum aaj ise duniya ki most famous paintings mein count karte hain. Lekin इंटरेस्टिंग बात यह है कि लियोनार्डो जो है वो रिपोर्टेडली इस पेंटिंग को सालों तक रिफाइन करते रहे थे. इमेजिन कीजिए, आज दुनिया कह रही है मास्टरपीस और आर्टिस्ट खुद सोच रहा है मे बी वन मोर टच. कितना रिलेटेबल है, हम भी कभी प्रेजेंटेशन कंप्लीट करके लास्ट मिनट तक फॉन्ट चेंज करते रहते हैं, कभी फोटो को परफेक्ट बनाते हैं तो कभी फिल्टर ट्राई करते रहते हैं. इवन इंस्टाग्राम पे जब आपको कुछ पोस्ट करना होता है तो आप 10 बार सोचते हो कौन सा फिल्टर लगाया जाए, कौन सा कैप्शन दिया जाए. पर सबको ऐसा नहीं लगता, हो सकता है किसी को वो एकदम परफेक्ट लग रहा हो. काम डन है फिर भी बोलते हैं एक बार और चेक कर लेता हूँ. परफेक्शन अच्छी चीज़ है लेकिन कभी कभी कंप्लीट करना भी एक स्किल होता है. और परफेक्शनिस्ट हैं या फिर मुझे लगता है कि आप चलो हो गया मूव ऑन करते हैं, दोनों टाइप के लोग होते हैं ना आपके आसपास, तो आप कौन सी कैटेगरी में आते हो? 3311063 इज माई नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. बाय द वे, मैं परफेक्शनिस्ट नहीं हूँ. मुझे लगता है कि हर चीज़ अपनी एक यूनिक तरीके से आती है. सो यू टेल मी. 3311063 इज माई नंबर. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: ये है मिडनाइट लाउंज।
1: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ओलिव 106.3 FM।

अच्छा सोचिए, आप किसी पर्सन से कम्प्लीटली डिसएग्री करते हैं, हो सकता है लाइफस्टाइल में, करियर में या कुछ और चीज़ों में। मैं तो बहुत बार करती हूँ। यूजुअली हम क्या करते हैं, आर्ग्यू। लेकिन इमेजिन कीजिए अगर रूल हो कि आप आर्ग्यू नहीं कर सकते, सिर्फ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आप ऐसा क्यों सोचते हैं, आपका एक्सपीरियंस ऐसा क्यों है, आपने ये ओपिनियन क्यों बनाया। सडनली कॉन्वर्सेशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि जब हम किसी की ओपिनियन सुनते हैं हम उसे जज करते हैं, लेकिन जब हम उसकी स्टोरी सुनते हैं हम उसे समझने की कोशिश करते हैं, उसे समझने लगते हैं। एक्चुअली मे बी दैट समथिंग वी नीड मोर ऑफ टुडे, लेस शाउटिंग मोर लिसनिंग। मतलब कई बार मैंने ऑफिस में ऐसा देखा है कि सिर्फ छोटी छोटी बातों को लेके हम अपने कॉलीग से यू नो कपड़ों की डिस्कशन कर रहे होते हैं या फिर फूड का डिस्कशन कर रहे होते हैं, और हमारे कॉन्वर्सेशन एकदम से आर्ग्यू में चेंज हो जाता है। सो अब आप मतलब ये सोच लीजिए कि आप आर्ग्यू नहीं कर सकते, आप सिर्फ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और वो कॉन्वर्सेशन बहुत ही हेल्दी कॉन्वर्सेशन बन जाएगा। सो आई विल से कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसे आप एग्री नहीं करते बट वुड जेन्युइनली लाइक टू अंडरस्टैंड। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान, नंबर है 3311063। दिस इज मुस्कान विद यू और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: ये है मिडनाइट लाउंज।

एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM। जियो बिंदास।

Very good evening. You are listening Radio Olive 106.3 FM. This is me, Muskan, with you. और शो का नाम है Midnight Lounge. एक एक्सपेरिमेंट करते हैं. आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए डार्क थिएटर, बिग स्क्रीन, थोड़ा छोटा सा कारपेट, कोल्ड एयर कंडीशनिंग और पॉपकॉर्न. बस आपका ब्रेन ऑलरेडी मूवी मोड में जा चुका है, क्योंकि स्मेल हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद मेमोरी एंड इमोशन. इसीलिए कभी सिनेमा के बाहर पॉपकॉर्न की स्मेल आती है और सडनली बचपन की वो मूवी याद आ जाती है या फिर कोई थिएटर की याद आ जाती है. सो इंटरेस्टिंग बात यह है कि मे बी यू आर नॉट क्रेविंग पॉपकॉर्न, ठीक है, यू आर क्रेविंग द मेमोरी अटैच्ड टू इट. मतलब मुझे पॉपकॉर्न कुछ खास पसंद नहीं है, बट जब भी मैं कोई मूवी देखने जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे तो पॉपकॉर्न लिए जा सकते हैं. दैट्स वाई सर्टन स्मेल्स फील टाइम मशीन, यू नो, ओल्ड परफ्यूम, बारिश की बूंदें या फिर ग्रैंड मदर का किचन, फर्स्ट स्कूल, एक स्मेल और पूरा सीन वापस सामने बिल्कुल आंखों के. आपके लिए कौन सी स्मेल है जो इंस्टेंट टाइम मशीन का काम करती है? सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल 106.3 FM. दिस इज मी मुस्कान विद यू और ये है आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो ऑल 106.3 FM. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: ये है मिडनाइट लाउंज।
1: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ओलिव 106.3 FM।

Very good evening. You are listening Radio Olive 106.3 FM. This is me, Muskan, with you. Our show ka naam hai, yes, of course, Midnight Lounge. So, aaj mere jaane ka time ho chuka hai. So, I will say ki bas ek scene imagine kijiye. Aaj hai Sunday ki night. Weekend to kal hi khatam ho gaya tha. Aaj subah se hum sab ke paas bahut sare kaam hai. So, aap bed par hain aur suddenly brain bolta hai ki kal meeting hai. Wo email ka reply, alarm kitne baje lagana hai. Wo do din ke baad jab alarm lagati hu na main Sunday ka, to mujhe samajh mein aata hai ki yaar weekend khatam ho chuka hai. Aur bas 5 minute pehle jo peaceful weekend tha, ab wo Sunday hai. So, I will say ki kal ki preparation aap already aaj se start kar दीजिए. इस फीलिंग को पॉपुलरली हम संडे स्केरीज कहते हैं और वर्ल्ड में, बट हमारे लिए ये सैटरडे स्केरीज है क्योंकि हमारा तो वीक जो है वो संडे से स्टार्ट हो जाता है. लेकिन मुझे लगता है प्रॉब्लम संडे या मंडे में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम कभी कभी कल को आज में ले आते हैं. वीकेंड खत्म होने से पहले ही उसकी टेंशन शुरू हो जाती है. सो मे बी टू नाइट आई विल से कि कल मंडे को मंडे ही रहने देते हैं. आज इसे इंजॉय कीजिए, थोड़ा म्यूजिक, थोड़ा डिनर, थोड़ी कॉन्वर्सेशंस और कल की टेंशन कल देखेंगे. अभी के लिए आई विल से कि आपको संडे नाइट पीसफुल लगती है या फिर ऐसा लगता है कि यार दिन भर के काम थे और फाइनली निपट गए. सभी के लिए आई विल से कि बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए. कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह पर. तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून. एंड आई एम ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, नंबर है 3311 1063. स्टे ट्यून, जियो, बिंदास.

0: ये है मिडनाइट लाउंज।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।

0: तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिंदास
1: आरजे सिमरन के साथ
2: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: This hour is brought to you by Homestar Us. We complete your home.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।
0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर 1 रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास

सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। बिंदास।